मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि। तदनुसार 4 जून सन 2026 इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार हूँ।

0: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6 बजे

बजकर 5 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश गान के साथ।

ईश्वर की भक्ति, उसकी सेवा, उसका भजन, उसका मनन, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता का भजन करना ही सच्ची भक्ति है। बिना भक्ति मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। आत्म कल्याण के लिए भक्ति अनिवार्य है। हर लोभ, इच्छा, गुमान, अहंकार से परे सच्ची आराधना हमें ईश्वर के समीप ले जाती है।

अहंकार हमें पतन के रास्ते पर ले जाता है, वहीं दूसरों का सहयोग, हमारी सत्कर्म हमें उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तू सच्चे कर्म कर और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे तेजपाल सिंह, सुरिंदर पाल सिंह, अनूप जलोटा और प्रीति सागर की। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: विश्व में जितने महापुरुष, संत, महात्मा, सुधारक और युग निर्माता हुए हैं, उनका जीवन सादगी प्रधान रहा है। सादा जीवन और उच्च आदर्श सभ्य समाज के जीवन सूत्र समझे जाते हैं। सादगी से प्रायः तात्पर्य ऊपरी वेशभूषा

0: और रहनी सहनी से होता है, परंतु ये ऊपरी स्वरूप तो आंतरिक सादगी के बिना संभव ही नहीं है। यदि भीतर और बाहर जीवन में सादगी नहीं है तो वो मिथ्याचार कहलाता है। सुख और संतोष प्राणी मात्र का लक्ष्य होता है, सादगी साधन है। हमारे युग में ही लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानाडे, महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि महान विभूतियाँ सरलता और सादगी के आधार थे। सच पूछिए तो सादगी और महानता पर्यायवाची शब्द हैं। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अमेरिका स्थित राजदूत लॉर्ड लोथियन महात्मा गांधी से मिलने वर्धा आश्रम में पधारे। गांधी जी से भेंट के उपरांत पत्रकारों ने लॉर्ड लोथियन से उनके विचार गांधी जी के विषय में पूछे। उनका उत्तर था, महात्मा गांधी ने सादगी को गौरव प्रदान किया और गरीबी को सौंदर्य। प्रहत स्मरणीय अवतार और विभूतियां ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य आदि मनसा वाचा कर्मणा सरल थे और सरलता का उन्होंने विश्व को मंत्र दिया। प्रभु ईसा मसीह के वाक्य सदैव प्रेरणा के सूत्र रहे हैं। बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हृदय वालों के लिए प्रभु के साम्राज्य में स्थान है। सादगी से समाज में आदर सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही सुख शांति और प्रभु प्राप्ति का भी ये अचूक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तो सादगी को ही सज्जनता कहा है। जानो सज्जन की यही एकमात्र पहचान, इनके होते तीन हैं मन वच कर्म समान। गुप्त जी की परिभाषा में तो सज्जनता का अर्थ ही है सादगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को दिए नवधा भक्ति संदेश में सरलता को उच्च श्रेणी की भक्ति बताया है। नवम सरल सबते छलहीना। भक्त भगवान को सरलता से ही प्राप्त करता है। यही नहीं, दुनिया भी सरलता से ही मिलती है, छल कपट से नहीं। छल कपट से प्राप्त दुनिया टिकाऊ नहीं रह सकती। अंत में विजय सत्य की ही होती है। प्रायः देखा जाता है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में इंसान सरलता को छोड़ पेचीदा होता जा रहा है। परिणाम में सुख और संतोष दूर होते जा रहे हैं। कृत्रिम जीवन में मिल ही क्या सकता है सिवाय दुख दर्द क्लेश और चिंताओं के। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जीवन में सुख और शांति संतोष की नाव द्वारा ही मिल सकती है। जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए संतोष रूपी जल की आवश्यकता है। जिस प्रकार बिना जल के नाव चलना मुश्किल है, उसी प्रकार बिना संतोष के जीवन में सुख दुर्लभ है। संतोष जीवन की एक स्थिति है जिसके लिए साधना की आवश्यकता है, और वो साधन है तन मन और वाणी की सरलता। सुख और संतोष शब्दकोश अथवा भाषण की वस्तु नहीं है, ये अनुभव साध्य है। इसके लिए दृढ़ आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। सादगी में कितना सुख और कितना संतोष है, इसका अंदाज हम महापुरुषों की करनी और कथनी से सहज ही में लगा सकते हैं। कोपीनधारी गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष धनद कुबेर भी दीन था। तीन टूक कोपिन के और भाजी बिन नून, रघुबर जाके उर्वसे इंद्र बापुरव कौन।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन, शीर्षक था सादगी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह की 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा और राधा पौडवाल के स्वर में श्री रामचरितमानस गान।

खेती की बातें कार्यक्रम में आज प्रसारित की जाएगी डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। शीर्षक है डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन। समय सुबह 6:45।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आज बात होगी बच्चों में निमोनिया रोग के कारण, लक्षण और बचाव पर। जानकारी देंगे डॉक्टर बीबी कुशवाहा। सुबह 9:45 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। गायक कलाकार हैं भारत सिंह। महान अभिनेत्री नूतन पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम। आज के कलाकार प्रसारण समय दिन में 11 बजे। बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए, ये है शीर्षक कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:30 पर। दोपहर 1:15 पर घनसंसार कार्यक्रम में आज बात होगी बाल शोषण एक अक्षम्य अपराध पर। रिश्ते रातों में बात होगी बच्चों से दोस्ताना व्यवहार पर। ज्ञान विज्ञान होम डेकोर के साथ आप सुनेंगे स्वाति सिंगल की वार्ता। शीर्षक है मोबाइल के बीच बचपन, माता पिता और शिक्षक की चुनौती। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा दोपहर 1:45 पर गजलों का गायक कलाकार हैं राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। भूले बिसरे गीत व लोकप्रिय फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा क्रमशः 2:45 व दोपहर 3 बजे। साथ ही दोपहर 3:30 पर रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में जिला मनोविज्ञान केंद्र आगरा के प्रभारी डॉक्टर साहिब सिंह से अनिंद सिंह की बातचीत प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा।

चार बजे सुनेगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा का विषय है सहज व्यवहार। क्वेस्ट वर्ल्ड हेल्थ प्लस टिप ऑफ द डे के साथ आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता। शाम 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा होगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। मंडी भाव, मौसम व लोकगीतों के साथ सुनेगा वार्ता अपनी मिट्टी पहचाने। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा होगी हिंसा के शिकार निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। ज्ञान सागर आज का प्रश्न, देश दुनिया की जानकारी सेहत टिप्स के साथ सुनेगा फिल्म संगीत। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में डॉक्टर जय सिंह नीरद की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा शुभ्रा तरेगांवकर से ख्याल गायन। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस गान गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वार्ता, शीर्षक है डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन। वार्ताकार हैं डॉक्टर यूडी गुप्ता।
1: किसान भाइयों, दूध की बढ़ती कीमतों एवं मांग के कारण आम आदमी

आदमी का रुझान डेयरी पशुओं को व्यवसाय का रूप देने की तरफ गया है। लंबे समय तक पशुपालन कृषि के सह व्यवसाय के रूप में पनपता रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे अलग से व्यवसाय का रूप मिलना शुरू हुआ है। डेयरी व्यवसाय की सफलता के लिए पशुओं के चुनाव पर ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर एक एकड़ भूमि पर एक गाय या भैंस रखी जाती है, परंतु यदि भूमि उपजाऊ है तो यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। संख्या के निर्धारित करने के उपरांत पशुओं की किस्म जैसे भैंस, देसी गाय या संकर गाय के विषय में निश्चय करना भी आवश्यक है। यदि हरा चारा व दाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में संकर गाय को रखना बेहतर रहता है। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो और सिर्फ भूसे या पुआल पर ही पशु रखने हों तो ऐसी स्थिति में देसी गाय या भैंस का रखना ही ठीक रहता है। किस्म के चुनाव के बाद नस्ल का चयन भी आवश्यक है। बेहतर तो यही है कि फार्म पर एक ही नस्ल के पशु रखे जाएं। एक से अधिक नस्ल के पशु रखे जाने पर पशुओं की कीमत कम मिलती है। नस्ल का चुनाव उसकी उपलब्धता, लोकप्रियता एवं कीमत पर निर्भर करता है। उत्तरी भारत में भैंस की मुर्रा, नीली रावी तथा भदावरी आदि नस्लें, गाय की साहीवाल, हरियाणा थारपारकर, राठी, मेवाती आदि नस्लें तथा संकर गायों की जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन तथा ब्राउन स्विस से उत्पन्न गायें आसानी से मिल जाती हैं। ये पशु बड़े बड़े डेयरी फार्मों जैसे इज्जतनगर, पंतनगर, करनाल, हिसार तथा लुधियाना आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। दुधारू पशु खरीदते समय पशु में मुख्य गुण जो देखे जा सकते हैं वो हैं, दुधारू पशु का स्वभाव सीधा हो, अत्यधिक सुस्त, तेज व भड़कीले पशु कम दूध देते हैं, पशु का पिछला धड़ भारी तथा अगला धड़ हल्का हो, गर्दन पतली, मस्तक चौड़ा, आंखें तेज, नथुने बड़े, कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े एवं समतल, छाती का घेरा बड़ा, आयन बड़ा तथा आगे पीछे की ओर फैला हुआ, थन मध्यम एवं समान आकार वाले तथा दुग्ध सिराएं सुविकसित हों, पशु की टांगें छोटी व मजबूत हों, पशु की ऊंचाई कम तथा लंबाई अधिक से अधिक हो, दुधारू पशु को सामने ऊपर तथा बगल से देखने पर उसकी आकृति त्रिकोणात्मक दिखाई दे, सामने से देखने पर कुंवर के पीछे का हिस्सा तथा कंधे के पीछे त्रिकोण बनता हो, यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की छाती उतनी ही चौड़ी होगी, छाती चौड़ी होने पर हृदय तथा फेफड़े को पर्याप्त जगह मिल जाती है, ऐसे पशु अधिक शक्तिशाली तथा उत्पादनशील होते हैं। ऊपर से देखने पर कुंवड़ के ठीक पीछे के हिस्से तथा हुक बोन के बीच एक त्रिकोण बनता है, यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की श्रेणी गुहा उतनी ही बड़ी होगी, श्रेणी गुहा में पशु के जननांग बड़े होंगे तथा ऐसा पशु अधिक प्रजननशील होगा। इन लक्षणों के अतिरिक्त पशु की पतली, मुलायम व चिकनी त्वचा, क्रियाशील कान तथा चारा देखते ही उस पर झपटना उसके निरोगी होने के मुख्य लक्षण हैं। पशु खरीदते समय कुछ बीमारी के कीटाणु
पशुओं में

0: मौजूद रहते हैं, परंतु उनमें बीमारी के लक्षण न उभरने के कारण वे अन्य पशुओं में भी संक्रामक बीमारी फैला देते हैं। अतः पशु कितना भी स्वस्थ एवं निरोग लगे, उसे कम से कम 15 दिन तक अन्य पशुओं से अलग ही रखा जाए। यदि विदेशी नस्ल के पशुओं को फार्म पर रखना हो तो उन्हें देसी नस्ल के पशुओं से अलग रखना चाहिए। साथ ही विदेशी नस्ल के पशुओं के रखरखाव में कुछ विशेष सावधानियां रखी जानी चाहिए, जैसे कि ये पशु आसानी से बीमारियां जो कि हमारे देश में प्रचलित हैं उनको आसानी से पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें अन्य पशुओं से अलग रखना ही बेहतर रहता है। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन विदेशी नस्ल के पशुओं से हमारे देसी नस्ल के पशुओं में भी आ सकती हैं, अतः इनको अलग-अलग रखने से देसी नस्ल के पशुओं में इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है। विदेशी नस्ल के पशु अधिकतर ठंडी जलवायु के होते हैं, अतः विशेषकर गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें नियमित रूप से नहलाया जाए, जिससे कि गर्मी का उन पर बुरा प्रभाव न पड़े। कीमती पशु खरीदने के पश्चात पशुपालकों को उनका बीमा अवश्य कराना चाहिए। आजकल बीमा की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, अतः किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी पशुपालकों का मनोबल नहीं टूटता। यदि फार्म पर अच्छी नस्ल के पशु रखने हों तो फार्म पंजीकृत करा लेना चाहिए। पंजीकृत फार्म के पशुओं की कीमत अधिक होती है तथा सरकार से ऐसे फार्मों को प्रजनन व उत्पादन संबंधी नीति निर्धारण में भी सहायता दी जाती है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। शीर्षक था डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन।

जब कोई पेड़ कटता है तो जीवन घटता है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरा को हरा भरा बनाएं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह की 6:55 होने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु

0: ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation.

0: साथ ही साथ बच्चा दूध पीने में भी अनमना होता है, साथ में कभी कभी दस्त उल्टी की शिकायतें भी निमोनिया के साथ होती हैं। मुख्य बात है निमोनिया में सांस की प्रक्रिया, सांस की गति बहुत तेज़ हो जाती है। इस श्वसन प्रक्रिया के बदलाव में बच्चे के परिजनों को सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, प्रश्न ये है कि जो हमारी माता बहना हैं उनको क्या खास ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके?
0: निमोनिया के कई कारणों में से कुछ कारण ऐसे हैं जिनको टीकाकरण से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो टीकाकरण सुविधा उपलब्ध है सरकारी स्तर पर भी, और आप प्राइवेट क्लिनिक में जाके भी करा सकते हैं, बच्चे के जन्म से ही टीके की प्रक्रिया शुरू होती है, समय समय पर टीके दिए जाते हैं, तो निमोनिया के लगभग 50% केस को टीकाकरण से रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा कुपोषित होता है, खान पान ठीक नहीं होता है, कमज़ोर होता है, तो उसकी प्रतिरक्षण की प्रक्रिया कम हो जाती है, डिफेंस कम होने की वजह से छोटा मामूली इन्फेक्शन भी भारी पड़ता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के परिजनों को उसके खान पान का ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण समय पर कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब मौसम बदलाव आता है उस समय विशेष प्रकार के जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और निमोनिया पैदा कर सकते हैं, तो इस संक्रमित काल में जैसे ठंड से गर्मी का शुरू होना, गर्मी से ठंड का शुरू होना,
1: यानी संक्रमण काल।
0: जी, उसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो बात सही है कि विशेष सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं, तो ऐसी माताओं को क्या खास ध्यान रखना चाहिए, ये जरा स्पष्ट तौर पर बताएं प्लीज।
0: निमोनिया के शुरुआती लक्षणों में सर्दी जुकाम, हल्का सा जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है या आँखों से पानी आ रहा है, खांसी है हल्की सी, उसी समय आप अगर सावधानी बरतते हैं, एक तो बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखना है जिससे संक्रमण परिवार में ना फैले, और बच्चे अमूमन जो इससे प्रभावित होते हैं वो घर में रहने वाले ही होते हैं, दूसरे उनके खान पान का ध्यान रखना है, वस्त्र आदि मौसम के अनुकूल, और सबसे ज़रूरी चीज़ है घरेलू उपचार है गुनगुना पानी। ये शुरुआत जो होती है गले के संक्रमण से होती है, गुनगुना पानी अगर दिया जाता है तो संक्रमण सीमित हो जाता है और आगे बढ़ने की संभावनाएं कम रहती हैं।
1: जी, और यदि बहुत छोटा बच्चा है, मान लीजिए 6 महीने से छोटा बच्चा है, तब क्या खास ध्यान रखना है?
0: 6 महीने से छोटे बच्चे में भी यही विशेष समय पर उसे दूध दिया जाए, और कोई भी दवा खांसी के लिए बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं देनी है। इसमें भी अब गुनगुना पानी सर्वप्रथम इलाज है, 2-2 चम्मच गुनगुना पानी दिन में 4-6 बार दें, नाक की सफाई रखें, रुई से लेकर के हल्के से नाक साफ करें, और किसी भी चिकनाहट सरसों का तेल या कोई कोल्ड क्रीम नासा छिद्र के अंदर दिन में 2-3 बार लगाई जा सकती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आपने निमोनिया के लक्षण और कारण के बारे में विस्तार से बताया, आशा है हमारे सुनने वाले फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बी.बी. कुशवाहा की वार्ता। शीर्षक था, बच्चों में निमोनिया रोग के कारण लक्षण और बचाव।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 106.1 मीटर पर सुबह के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: केवल भगवान से डरो। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी।
5: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश,

0: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
1: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
2: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए

0: कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यधमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रदेश से चुनी गई बिरहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया आगरा का मान। जी हां, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देशभर की उत्कृष्ट पंचायतों को सम्मानित किया गया। ये गौरव प्रदेश की एकमात्र सिंहा विकास खंड की ग्राम पंचायत बिरहरू को नसीब हुआ।

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत आगरा, बरेली व प्रयागराज में नए शहरों के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। इससे प्रदेश में आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नगरीय विकास को नई गति मिलेगी। योजना के तहत नए शहरों के विकास के लिए भूमि अर्जन पर होने वाले व्यय का लगभग 50% तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्षों के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान दिया गया है।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होने की उम्मीद है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 9 जून से 15 जून तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जबकि 19 जून को सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट के 2150 पद रिक्त हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग का अनुमान है कि उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों के आधार पर पहले चरण में करीब 1100 पदों पर नियुक्तियां हो सकेंगी।

दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से पार पाने की रणनीति पर प्रदेश सरकार ने अमल तेज कर दिया है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने से लेकर उद्योगों की ऑनलाइन निगरानी, सड़कों की मशीनों से सफाई और कचरा प्रबंधन तक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 1 अक्टूबर से एनसीआर के 1041 पेट्रोल पंपों पर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए ईंधन नहीं मिलेगा। एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर व शामली, दिल्ली तथा हरियाणा व राजस्थान के कुछ जिले आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण व वायु गुणवत्ता सुधार को लेकर बुधवार की मुख्य सचिव

की उच्च स्तरीय समीक्षक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 14 और 17 जून को आयोजित की जाएगी। हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र एवं रसायन विज्ञान सहित कुल 13 विषयों की परीक्षा 14 जून को होगी। इसके लिए प्रदेश के 67 जनपदों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा 31 मार्च सन 2026 तक पास नक्शों को वैध कर दिया है। इसके बारे में विकास प्राधिकरणों में सूचना देनी होगी। इसके बाद ऐसे भवनों को विनियमित अर्थात रेगुलराइज मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्रोताओं आइए सुनते हैं ये मधुर भक्ति गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से और एक बार फिर शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। काजीपाड़ा बिजलीघर क्षेत्र में जल भराव से निपटने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। पानी की लाइन को शिफ्ट किया जाएगा, नई पुलिया का निर्माण किया जाएगा। वहीं आगरा किला के सामने स्थित अमर सिंह गेट से लेकर झलकारी बाई चौक तक नाला बनेगा। ये निर्देश बुधवार को नगर आयुक्त द्वारा दिए गए। डाक सेवाओं से संबंधित जन शिकायतों के निस्तारण के लिए 9 जून को प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में डाक अदालत आयोजित की जाएगी। पोस्ट मास्टर ने इसकी जानकारी दी और वे ही इसकी अध्यक्षता भी

करेंगे। जिन परिवारों का निस्तारण संबंधित डाक अधिकारियों स्तर पर न हुआ हो उन्हें 5 जून तक सहायक निदेशक डाक सेवाएं कार्यालय में भेजे। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं खेत तालाब योजना के तहत किसानों को निजी भूमि पर तालाब खुदवाने के लिए 52,500 रुपयों का अनुदान दिया जाएगा। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित है। तालाब का उपयोग वर्षा का जल संचयन, मत्स्य पालन और सिंचाई में किया जाएगा।

0: कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम आसपास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 21907-21908 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 27 मई से हर बुधवार को और काठगोदाम से 28 मई से हर गुरुवार चलेगी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:55 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:50 पर मथुरा जंक्शन और दोपहर 1:50 काठगोदाम पहुंचेगी। ट्रेन काठगोदाम से शाम 5:30 पर चलकर रात्रि 1:05 पर मथुरा जंक्शन और अगले दिन रात 9 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

विशेष अभियान में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले वाहन होंगे सीज। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने और नंबर छिपाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही अवैध खनन और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिले में 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से जोड़कर उन्हें ऋण सुविधा और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि अभियान 3 स्तरों पर संचालित किया जा रहा है।

एकलव्य स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, लॉन टेनिस व वॉलीबॉल के लिए कोच के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सभी खेलों के कोच जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति की ओर से रखे जाएंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दर्जन से अधिक खेलों में प्रशिक्षण लेने को 1000 से अधिक प्रशिक्षु हर रोज आते हैं। फिलहाल स्टेडियम में 10 खेलों में कोच उपलब्ध हैं, अन्य 5 खेलों में कोच नहीं है, जिससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में समस्या रहती है। जल्द आवेदन मांगे गए।

हैं, योग कोच का चयन कर खिलाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम में आसपास में श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत, फिर हम सूचना देंगे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं पर।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं, आइए अब नजर डालते हैं मौसम से संबंधित सूचनाओं पर। उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। शहर में गुरुवार से शनिवार तक गरज के साथ बौछार पड़ने का मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। आंशिक बादल छाए रहेंगे, तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रविवार से तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और एक बार फिर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा, अर्थात अत्यधिक गर्मी का सामना हमें करना पड़ेगा। और गर्मियों के मौसम में पेट का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं इस पर भी। तेज गर्मी और शरीर में पानी की कमी का सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता रहा है। दरअसल गर्मी में तापमान नियंत्रित रखने के लिए शरीर ज्यादा पानी खर्च करता है। ऐसे में अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो पाचन जो है वो धीमा पड़ जाता है, नतीजा गैस, कब्ज और ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं।

ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा कैफीन लेना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्या करें, हल्का भोजन लें। इस मौसम में छिलके वाली व धुली मूंग दाल, तुअर दाल, दलिया, खिचड़ी, रागी और राबड़ी जैसे खाद्य पदार्थ जो हैं वो आपके पेट के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। मसालेदार और भारी आहार पाचन क्रिया की गति को धीमी कर सकते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। और आइए सुन लेते हैं कुछ गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं।

पहली सूचना के अनुसार अभिनंदन गुप्ता पुत्र सत्य प्रकाश निवासी गली एक हुंडावाला बाग थाना दक्षिण फिरोजाबाद। इनकी उम्र जो है वो 39 वर्ष है और ये दिनांक 16 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कद 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, शरीर की बनावट व चेहरा सामान्य है। गुमशुदगी के दौरान ये पैरों में चप्पल व सामान्य पैंट शर्ट पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना दक्षिण फिरोजाबाद पर संपर्क करें।

अन्य सूचना के अनुसार श्रीमती पूनम पत्नी गौरव निवासी गड़ेया थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज, इनकी उम्र 19 वर्ष है और ये दिनांक 19 अपैल सन 2026 से लापता है। कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ। गुमशुदगी के दौरान ये बैंगनी रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित सूचना मिलने पर थाना सिकंदरपुर वैश्य जनपद कासगंज पर सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार सोनी पत्नी धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम जालमई थाना पटियाली जनपद कासगंज, इनकी उम्र 30 वर्ष है और ये दिनांक 26 अप्रैल सन 2026 से लापता है। कद 5 फुट, रंग गोरा। इनके दाएं गाल व ठोड़ी पर तिल का निशान है। गुमशुदगी के दौरान ये पीले रंग की साड़ी व पैरों में हवाई चप्पल पहने हुई थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना पटियाली जनपद कासगंज पर सूचित करें। और इसी सूचना के साथ गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं और आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण, दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से

0: अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर

0: ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए

0: खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल

0: ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ता ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation

0: तफसील हमारे नामनिगार से।
1: G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनाकिद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती हैं। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फन, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत हैं। नुमाइश के जरिए गैर मुल्की मंदूबीन न सिर्फ इन मसनूआत की इनफरादियत से वाकिफ होंगे बल्कि मुकामी फनकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाजार तक पहुंचाने का मौका भी मिलेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में भारत गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नजरिए के तहत काबिले जिक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज्म व जब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इसलाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है, जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है, जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बरह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इसलाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, खवातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की CMD कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीकेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुव्वत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में

0: गुज़श्ता रोज़ लगी ज़बरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिश जदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगाओ में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना कैलाश खेर के स्वर में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था विनय तिवारी ने और फिल्म का नाम था थोड़ी लाइफ थोड़ी मैजिक। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जावेद अली इरफान अली।

0: तुम मिले, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जावेद अली, इरफान अली और शादाब की आवाजों में। संगीत प्रीतम का था, बोल सईद कादरी के। फिल्मी गीतों का सफर श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा, मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

तुम सा नहीं देखा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीत गाते समय संगीतकार नदीम शवन। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में, शब्दशना आनंद बख्शी की, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है सौदागर।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है दिल, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

दिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिध सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान व शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वार फेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया।

0: जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धरा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि के प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज KSB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान

0: कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छविलाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

0: Churi.
1: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर टी बर्मन और फिल्म का नाम था दो चोर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार है नीरज, संगीतकार एस डी बर्मन, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल मंजू सुल्तानपुरी के संगीता डी बर्मन का दिया हुआ है और फिल्म का नाम है बहारों के सपने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म छलिया से। गीतकार हैं कमर जलालाबादी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और स्वर है लता मंगेशकर का।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के गायक कलाकार हैं भारत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, गायक कलाकार थे भारत सिंह। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

मजू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरजी बर्मन ने और फिल्म का नाम यादों की बारात। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और अनीटी की आवाजों में। शब्दशना गुलशन बाबरा की है, धुन बनाई है आरजी बर्मन ने और फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी व साथियों की आवाजों में। गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार आरजी बर्मन और फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अमर प्रेम से, स्वर किशोर कुमार का।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

0: अमर प्रेम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। फिल्मी गीतों का सफर श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीत एसजी बर्मन का था और फिल्म का नाम आराधना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना साहिर की है, धुन बनाई है आरजी बर्मन ने और फिल्म का नाम है दीदार।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

दीदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे साहिर, संगीतकार आर डी बर्मन। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अकील अहमद खान का गाया राग शिवमत भैरव में ख्याल गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार अकील अहमद खां द्वारा राग श्रीमद भैरव में ख्याल गायन और कार्यक्रम था शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जब भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की चर्चा होती है तो कुछ चेहरे स्वतः ही स्मृतियों में उभर आते हैं। उन चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी मुस्कान में सादगी, आंखों में गहराई और अभिनय में जीवन की सच्चाई झलकती थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने जो अपने जीवन में कभी भी किसी चकाचौंध की मोहताज नहीं रही। ना तो उन्होंने ग्लैमर का सहारा लिया और ना ही कृत्रिम अभिनय कभी किया, फिर भी उन्होंने दर्शकों के दिलों पर ऐसा राज किया कि आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। श्रोताओं, कल्पना कीजिए एक दुबली पतली सरल व्यक्तित्व वाली युवती जिसे उस दौर के सौंदर्य मानकों के अनुरूप नहीं माना जाता था। फिल्मी दुनिया में जहां आकर्षण और बाहरी चमक को सफलता की कुंजी माना जाता था, वहां इस युवती ने केवल अपने अभिनय के बल पर इतिहास रच दिया। आलोचकों ने कभी उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाए तो कभी उनकी शैली को अलग बताया, लेकिन समय ने सिद्ध किया कि प्रतिभा के सामने सभी पूर्वाग्रह छोटे पड़ जाते हैं। यह युवती आगे चलकर भारतीय सिनेमा की ऐसी महान अभिनेत्री बनी जिसने अभिनय को केवल कला नहीं बल्कि साधना का रूप दिया। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो कहानी है एक महान अभिनेत्री नूतन की। जी हाँ, जिन्होंने अपने असाधारण अभिनय से हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

इस प्यारे से नगमे के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आप और हम मिलकर तय कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की शालीनता और अभिनय की अनुपम प्रतिमूर्ति की जिंदगी का सफर, यानी कि नूतन की कहानी। श्रोताओं, नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम नूतन समर्थ बहल था। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से थी। उनकी माता शोभना समर्थ अपने समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जबकि पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। बचपन से ही नूतन का वातावरण कला और संस्कृति से परिपूर्ण था। हालांकि फिल्मी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनकी शिक्षा मुंबई के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड भी गईं। श्रोताओं, नूतन ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म थी हमारी बेटी, जिसका निर्माण उनकी माता ने ही किया। शुरुआती दौर में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। कई लोगों का मानना था कि वे पारंपरिक फिल्मी नायिकाओं जैसी नहीं दिखती, लेकिन नूतन ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं को अभिनय की दृष्टि से लगातार निखारा। सन 1952 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और वे विजेता भी बनी। इस उपलब्धि ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और फिल्म उद्योग का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। 1955 में प्रदर्शित सीमा नूतन के जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक विद्रोही और संवेदनशील युवती की भूमिका निभाई। उनके अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। नूतन ने सिद्ध कर दिया कि अभिनय केवल सुंदरता का नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। श्रोताओं, नूतन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्वाभाविक

अभिनय शैली थी। वे पात्र को केवल निभाती नहीं थी बल्कि उसे जीती थी। उनकी फिल्मों में भावनाओं का ऐसा प्रवाह दिखाई देता है जो दर्शकों को सीधे पात्र से जोड़ देता है। चाहे दुख हो, प्रेम हो, संघर्ष हो या त्याग, हर भावना उनकी आंखों में जीवंत

आंखों में जीवंत दिखाई देती है। सन 1959 में आई सुजाता नूतन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक दलित युवती की भूमिका निभाई जो समाज में समानता और सम्मान की तलाश करती है। नूतन ने इस भूमिका को इतनी संवेदनशीलता से निभाया कि दर्शक भावुक हो उठे। फिल्म ने जातिगत भेदभाव जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म सुजाता से इस प्यारे से मीठे से नगमे को।

फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं पेइंग गेस्ट, अनारी, छलिया, मिलन, सरस्वती चंद्र, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कर्मा। इन फिल्मों में उनके अभिनय की विविधता स्पष्ट दिखाई देती है। श्रोतो, यदि नूतन के अभिनय की सर्वोच्च उपलब्धि की बात की जाए तो फिल्म बंदनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बंदनी फिल्म वो फिल्म थी जिन्होंने उनके अभिनय को शिखर पर पहुंचाया। जी हाँ, महान निर्देशक विमल रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में नूतन ने एक महिला कैदी की भूमिका निभाई। फिल्म में संवाद कम है, लेकिन उनके चेहरे के भाव ही पूरी कहानी कह देते हैं। आलोचकों ने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास के महानतम अभिनय प्रदर्शनों में से एक माना। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म वंदनी से ये गीत।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आप और हम मिलकर तय कर रहे हैं नूतन के जीवन की कहानी। जी हां श्रोताओं, नूतन ने अपने करियर में अनेक यादगार

0: कहो,
1: तुम हो कहो।
2: ये मस्त नजर शोक अदा, इस नगमे को भी आप सुन रहे थे फिल्म बंदनी से। और ऐसी ही मस्त नजर और शोक अदाएं थी नूतन की। श्रोताओं, यदि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए तो सन 1959 में नूतन का विवाह रजनीश बहल से हुआ। उनके पुत्र मोहनीश बहल आगे चलकर हिंदी फिल्म और टेलीविजन जगत के प्रसिद्ध अभिनेता बने। विवाह के बाद भी नूतन ने अपने अभिनय करियर को सफलतापूर्वक जारी रखा। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला विवाह और परिवार के साथ भी अपने पेशेवर जीवन

जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती है। नूतन अपने समय की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपने अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए और लंबे समय तक सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। उनके सम्मान केवल पुरस्कारों तक सीमित नहीं थे, दर्शकों का प्रेम और आलोचकों की प्रशंसा भी उनके व्यक्तित्व की महानता का प्रमाण थी। श्रोताओं, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि नूतन एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गीत भी गाए। उनकी मधुर आवाज, उनकी बहुमुखी प्रतिभा कई परिचायक थी।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज की कहानी है नूतन की। श्रोताओं, नूतन केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, वे अभिनय की एक संस्था थी। आज भी अभिनय सीखने वाले कलाकार उनकी फिल्मों का अध्ययन करते हैं। उनकी सहजता, भाव प्रवणता और चरित्र के साथ आत्मिक जुड़ाव उन्हें अन्य अभिनेत्रियों से अलग बनाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि प्रतिभा, परिश्रम और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। जीवन के अंतिम वर्षों में नूतन को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें कैंसर हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस और धैर्य का परिचय दिया। वे अंत तक अपने कार्य और परिवार के प्रति समर्पित रहीं। 21 फरवरी 1991 को इस महान अभिनेत्री का निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसी कलाकार को खो दिया जिसकी भरपाई संभव नहीं। श्रोताओं, महान कवि हरिवंश राय बच्चन की यह पंक्ति नूतन के जीवन पर सटीक बैठती है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। नूतन ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को गरिमा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने अभिनय को मनोरंजन से ऊपर उठाकर संवेदनाओं की भाषा बना दिया। आज जब भारतीय सिनेमा का इतिहास लिखा जाता है तो नूतन का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिखाई देता है। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की भाषा और उनकी काल जयी अभिनय आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। नूतन वास्तव में भारतीय सिनेमाओं की वह अमर धरोहर हैं जिनकी चमक समय के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम, आज के कलाकार और हमारे आज के कार्यक्रम की कहानी थी नूतन की। मिलेंगे कल एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं समसामयिक विषयों पर, और आज ऐसा ही कुछ विषय हम लेकर आए हैं जिस पर चर्चा करेंगे आपसे। श्रोताओं आज है 4 जून और आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जी हाँ, बच्चों का बचपन हमें छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। नन्हे हाथों में खिलौने हों बोझ नहीं, आंखों में सपने हों कोई खोज नहीं, हंसी से गूंजे उनका सारा संसार, न छीने बचपन न टूटे उनका अधिकार। हर बच्चे को मिले प्रेम का आंगन, यही हो मानवता का सबसे सुंदर दर्पण। जी हाँ श्रोताओं, आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि क्यों आज का यह दिन बहुत खास है। बच्चों की मुस्कान किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनकी हंसी में भविष्य की उम्मीदें छिपी होती हैं और उनके सपनों में एक बेहतर दुनिया का निर्माण होता है। श्रोताओं बचपन वह अवस्था है जिसमें बच्चे जीवन के रंगों को पहचानते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। किंतु जब हिंसा, युद्ध, शोषण, बाल श्रम, उपेक्षा और आक्रामकता उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है तब उनका बचपन उनसे छीन जाता है। और इन्हीं मासूम बच्चों की पीड़ा को समझने और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों को भय और हिंसा से मुक्त सुरक्षित वातावरण हमें प्रदान करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का यह कर्तव्य है। बच्चे कल के नहीं बल्कि आज के नागरिक हैं। श्रोताओं बच्चे जो हैं उनके लिए ये जो विचार है कि बच्चे कल के नहीं बल्कि आज के नागरिक हैं, ये

विचार हमें प्रेरित करता है कि हम बच्चों के वर्तमान को सुरक्षित और सुखद बनाएं, क्योंकि उनका वर्तमान ही तो भविष्य की दिशा तय करता है। और हम बात कर रहे हैं कि बच्चों से उनका बचपन न छीना जाए, तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों का बचपन छीन जाता है? श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की शुरुआत उन बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए की गई थी जो कि युद्ध, आतंकवाद, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, मानव तस्करी और अन्य प्रकार की जो आक्रामकता का शिकार होते हैं उनके प्रति। ये आज का जो दिन है वो ये संदेश देता है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित वातावरण देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटे छोटे ये नन्हे मुन्ने बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। क्यों? क्योंकि उनका बचपन यदि असुरक्षित और खुशहाल होगा तभी तो वे भविष्य में एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे, और अगर वे जिम्मेदार और सशक्त नागरिक बनेंगे तो इसमें विकास किसका है? राष्ट्र का ना। तो इसीलिए बच्चे किसी भी राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति हैं। इसीलिए पूरी दुनिया मिलकर इस बात पर जोर देती है कि बच्चों से किसी भी तरह से उनका बचपन ना छीना जाए।

जी हाँ श्रोताओं, आप और हम सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज है 4 जून और आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और हमारा आज इस बात पर बल है कि बच्चों से उनका बचपन किसी भी तरह से ना छीना जाए। श्रोताओं, ये बात आखिर उठी क्यों कि बच्चों का बचपन उनसे छिन रहा है? तो इसके कुछ कारण हैं, वो आइए हम सब मिलकर उन जो वो कारण हैं उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ा तो कारण है युद्ध और संघर्ष। दुनिया के कई क्षेत्रों में चल रहे युद्धों और संघर्षों के कारण बच्चे अपने घर, परिवार, शिक्षा और सुरक्षा सभी से वंचित हो जाते हैं और वे भय और असुरक्षा के वातावरण में जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। अब जब दो देशों में या कई देशों में युद्धों की स्थिति बनती है तो हम देखते हैं कि ऐसे में कितना ही मतलब भयानक मंजर होता है और ऐसे में कई नन्हे मुन्ने बच्चे तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो देते हैं। और जब आप उस युद्ध की भूमि पर उन रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को देखते हैं तो हमारा दिल जैसे कि एकदम रो पड़ता है। आखिर उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये बच्चे इनकी मजबूरी बन जाती है कि वे भय और असुरक्षा के वातावरण में जीवन बिताएं, क्योंकि अब ना तो उनको संभालने वाला घर में कोई है और ना उनको प्यार देने वाला। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्कूल जाने के बजाय कारखानों, दुकानों और अन्य स्थानों पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उनका बचपन और शिक्षा दोनों ही प्रभावित होते हैं। श्रोताओं, शिक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन फिर भी और आज भी कई घरों में हम देखते हैं कि बच्चों के कोमल कंधों पर घर की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों के कंधों पर जिम्मेदारी जबरदस्ती डाली जाती है, कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वे खुद निकल पड़ते हैं कि हमें हमारा घर चलाना है। कई बार आर्थिक तंगियां ऐसी होती हैं घर में कि घर में या तो पिता नहीं है या फिर कोई घर चलाने वाले बड़े प्रधान घर के नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के बड़े बच्चे या घर के जो मेल बच्चे हैं या फीमेल बच्चे भी उसमें हो सकते हैं, वे घर से बाहर निकलने जाते हैं कि हम कुछ कमा के लाएंगे तो ऐसे में हमारा घर का जो चूल्हा चौका है वो जलेगा। कुछ बच्चे बचपन से ही अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन इससे उनका जो बचपन है और शिक्षा है दोनों ही प्रभावित होते हैं। उनका बचपन छिन जाता है और उनकी शिक्षा रास्ते में ही जो शुरू भी नहीं हुई थी वहीं छूट जाती है। इसके अलावा घर बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के शिकार बच्चे बन जाते हैं। हर बच्चे के लिए ये बात जाहिर नहीं होती, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा के शिकार बनते हैं। और ये बच्चे इस उत्पीड़न की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अपने बचपन को खो देते हैं, क्योंकि अब वे अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं जो कि हिंसा और उत्पीड़न से भरी हुई होती है। हर बच्चा बचपन में मुस्कुराना चाहता है, हर बच्चा खेलना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, लेकिन कुछ बच्चों के कहा जाए तो उनके हक में ये खुशियां नहीं होती। कुछ बच्चों का जीवन जो शुरुआती जीवन होता है वो, या उनके बात की जाए उनके बचपन की जो शुरुआत होती है वो कई बार हिंसा और भय के वातावरण में होती है, जिसकी वजह से उनका बचपन बचपन में ही छिन जाता है। इसके अलावा श्रोताओं, यदि आज के समय की बात की जाए तो डिजिटल युग में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कई बार हमारे बच्चे, जैसा कि हम सभी देखते हैं, आजकल ऑनलाइन समय बिताते हैं, छोटे बच्चे फोन पर गेम्स खेलते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं, तो ऐसे में अचानक किसी न किसी तरह से वे ऑनलाइन उत्पीड़न के शिकार बन जाते हैं।

और क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं कि घर में किसी को पता ना चल जाए, तो वे चुपचाप सहमे हुए रहते हैं और किसी को इस बात का बताते भी नहीं है, भनक भी नहीं लगने देते कि वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव से जुड़े हुए हैं और उनका कहीं ना कहीं उत्पीड़न चल रहा है। इसके अलावा कई बार माता पिता और समाज बच्चों पर अत्यधिक सफलता का दबाव डालते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल स्कूलों में बच्चों के स्कूलों के बैग जो है उनका वजन कितना बढ़ रहा है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट है, सेकंड तो कोई चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा है। और ऐसे में जब समाज में इतनी प्रतिस्पर्धा बचपन से ही बच्चों के स्कूली बैग पर डाल दी जाती है, तो बच्चे इस सफलता के दबाव के बोझ तले दब जाते हैं और इससे उनका स्वाभाविक विकास जो है वो बाधित होता है और वे तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो श्रोताओं, आज का ये दिन हमें बस यही मैसेज देता है, हमें ये संदेश देता है कि हम बच्चों से उनका बचपन न छीने। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जैसे कि बात की जाए युद्ध की या किसी और तरह की, लेकिन कुछ बातें जो हैं हमारे हाथ में हैं, जो हमारे घर से रिलेटेड हैं और जिनके द्वारा बच्चों का जो भविष्य है वो हम कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, बच्चों का बचपन प्रभावित कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कम से कम हमें उसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम कहीं बच्चों का उनसे बचपन तो नहीं छीन रहे हैं। बचपन केवल उम्र का श्रोताओं एक चरण नहीं है। बात की जाए जैसे कि बचपन आता है, उसके बाद जवानी आती है, है ना, उसके बाद अन्य अवस्थाएं आती हैं, तो बचपन सबसे शुरुआती अवस्था है। लेकिन यदि बचपन का जो महत्व है उसके बारे में बात करें, तो बचपन केवल उम्र का एक चरण नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत निर्माण की एक आधारशिला होती है। एक जैसे कि बात की जाए घर के निर्माण में जो पहली ईंट रखी जाती है ना आधार में, ठीक उसी तरह से बचपन भी वो पहली ईंट का काम करता है। और इसी अवधि में बच्चे प्रेम, करुणा, सहयोग, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। और यदि उनका शुरुआती ये बचपन ही भय और हिंसा में बीतेगा तो इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। बच्चों को खेलने, सीखने, सपने देखने और अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों में से एक है।

जी हाँ श्रोताओं, दो नैना और एक कहानी, क्योंकि इन दो छोटे छोटे नैनों में एक ना एक कहानी तो जरूर होती है कि मैं बड़ा होकर ऐसा बनूंगा या ऐसी बनूंगी, मैं बड़ा होकर ये करूंगा या ये करूंगी। लेकिन इन सपनों को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं। हर बच्चों के बचपन में आंखों में पानी तो होता है, लेकिन ये पानी उनका खुद का होना चाहिए। यानी कि जब बच्चे रूठें, मने खुश हो जाएं या किसी चीज के लिए मचलें, रोएं, तो वो जो बहने वाला पानी है वो स्वाभाविक है, हर बचपन में वो सबकी आंखों में होना चाहिए। लेकिन यदि आंखों से बहने वाला ये पानी किसी दबाव के कारण है, तो हमें ये समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें किसी बच्चे से उसका बचपन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। बच्चे से बचपन छीनने का मतलब है किसी खूबसूरत पेड़ पर या पौधे पर लगा हुआ एक फूल जो अभी अभी बस खिला है, कली से फूल बना है या कली खिली है, कली की ही बात कर ली जाए, या फिर कली खिली है या कोई नन्हा सा फूल खिला है और उसको हम तुरंत जाकर तोड़ लें। बस ठीक उसी तरह से है बचपन को मारना। बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए, क्योंकि जब किसी बच्चे के हाथ में किताब की जगह मजदूरी का सामान हो, जब उनकी आंखों में सपनों की जगह भय हो, और जब उनकी मुस्कान चिंता में बदल जाए कि आज तो मुझे घर पैसे लेकर जाने ही जाने हैं, आज तो मुझे इतने पैसे कमाने ही कमाने हैं, मुझे घर चलाना है, मुझे परिवार में ये करना है वो करना है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है।

हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा हिंसा, शोषण और उपेक्षा का शिकार तो बिल्कुल भी ना बने। बच्चों को केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि खुशहाल जीवन जीने का भी अवसर मिलना चाहिए। और श्रोताओं, यदि अवसर की बात की जाए तो प्रत्येक बच्चे को हमारा संविधान अधिकार देता है, और उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं वे हैं शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, समान अवसर का अधिकार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेम और सम्मान पाने का अधिकार। और इन अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्रोताओं, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि आज 4 जून हमें यह संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा और खुशहाली से बड़ा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और यदि हम उनसे उनका बचपन छीन लेंगे तो हम भविष्य की संभावनाओं को भी नष्ट कर देंगे। बच्चों की आंखों में सपनों का संसार रहने दो, उनके होठों पर हंसी की फुहार रहने दो, नन्हे कदमों को खेल के मैदान तक जाने दो, उनके मन को खुलकर गीत सुनाने दो, न बोझ बनाओ उम्मीदों का इतना भारी कि खो जाए उनकी मुस्कान प्यारी प्यारी, न छीनो उनके गुड़ियों और खिलौनों की दुनिया, यही तो है उनकी सबसे

सुंदर बगिया। युद्ध घृणा और हिंसा से उन्हें दूर रखो, प्रेम और विश्वास के फूल भरपूर रखो। हर बच्चे का अधिकार है खुशहाल जीवन, यही बने मानवता का सबसे सुंदर चिंतन। आओ मिलकर ऐसा संसार बनाएं जहां सभी बच्चे मुस्कुराते नजर आए। उनकी हंसी में ही भविष्य की पहचान है, बचपन बचाना ही तो सबसे बड़ा अभियान है। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मिलेंगे कल एक नए समसामयिक विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
3: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी।
3: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
3: जी।
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
3: जी।
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि।

0: तो एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी।
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी।
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी।
0: जहां तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे, मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
1: जी
0: वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
1: जी।
0: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी।
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित। इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot through the deep. The scoop shot, it gets through. It's a big one. It's a huge boundary. It goes wide through the offside.

0: got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
2: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठा।

0: जिस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपनी स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
1: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
2: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
3: क्या अभी आपके पास समय होगा?
2: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
1: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
2: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
3: जी वही।
1: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
2: अच्छा।
3: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
2: और
1: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
2: हाँ, बोलो।
3: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
3: 5000 वर्ष पहले?
2: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
1: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
2: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
3: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
2: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
3: अच्छा।
2: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
3: जैसे
2: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
3: वैदिक समूह?
2: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
3: भरत?
1: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
3: ओ, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
2: हाँ।
3: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
3: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
3: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
3: हाँ, ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
3: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
3: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
3: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे

0: विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
2: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
2: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
2: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
2: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
2: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओह।
2: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
2: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
2: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
2: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
2: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्राय स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
2: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
2: सही।
1: तुर्किस्तान।
2: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
2: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
2: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम है, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसे लगी आपको अपने प्यारे देश
4: भारत अर्थात इंडिया
3: के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी?

0: लगी ना, इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
1: भारत, अर्थात इंडिया।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
3: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
4: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
5: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
6: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
7: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
6: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
7: हाँ पूछो बेटा।
6: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
7: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
5: लेकिन माँ,
7: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
6: जी
7: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
6: अच्छा माँ, ये लो माँ।
7: ला।
5: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
6: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
7: क्या मिल गया
6: मुझे? माँ माँ माँ,
7: क्या मिल गया, क्या मिल गया
6: मुझे? मिल गया,
5: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
7: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
6: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
5: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
6: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
7: धुआं?
6: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
7: हा?
6: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
7: कुछ हा? भी तो नहीं,
5: कुछ भी तो नहीं है।
6: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
5: वो तो है मगर
6: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
6: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
5: हाँ
6: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
6: ठीक है, आओ मेरे साथ।
7: अरे सुनो,
6: देखते हैं।
7: अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन, जोसेफ सुनो तो।
4: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी

0: मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे अरे
2: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
3: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई भीड़ तो है,
5: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
3: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
3: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
6: ना जाने क्या करेंगे,
5: भला कोई चीज उड़
6: सकती है।
4: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
3: भाई साहब हट जाइए। आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
3: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
3: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
3: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
3: कमाल कर दिया।
4: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
3: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
3: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
4: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
3: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
4: अरे देखो, अरे वो पेड़ों की तरफ, अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार, नमस्कार।
9: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र का प्रसारण, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे नई फिल्मों से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म OMG 2 से हंसराज रघुवंशी की आवाज में ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन भी हंसराज रघुवंशी का है।

आपके रेडियो सेट पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में। संगीत निर्देशन है यार रहमान का और फिल्म का नाम है 1, 2 का 4।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से और कार्यक्रम है नए तराने। कार्यक्रम का यह अगला गीत आप सुनेंगे नीति मोहन की आवाज में और फिल्म का नाम है पद्मावत।

अंबर सरिया। इस नगमे को अभी आप सुन रहे थे सोना महापात्रा की आवाज में फिल्म फुकरे से। कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे फिल्म रेड से राहत फतेह अली खान की आवाज में। संगीत निर्देशन है तनिष्क बागची का।

श्रोता समय सुन रहे हैं नए फिल्मों से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे आपके रेडियो सेट पर फिल्म राज 3 से, जिसमें अपनी आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, संगीत निर्देशन है जीत गांगुली का और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इस आप सुनेंगे फिल्म कयामत से, अभिजीत और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और शब्द रचना समीर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने का ये अंतिम नगमा।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है, इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम साढ़े

0: 7 when reports last came in, and with that we end this news bulletin.
1: खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से रियासत के नज्म नसक, आइंदा होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान और मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुजव्वजा अवामी शराकतदारी पर मबनी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक्वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकतदारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वजीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ्फत और राजदारी को बनाए रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज्म नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफादे आम्मा की 24 तजावीज मंजूर की गईं। शहरी तरक्की के वजीर ए के शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगान ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराह रास्त शामिल हुए हैं। दरअसल रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवसुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत, तहफ्फुज़ और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
2: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशंस के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए स्थान को चुना गया।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत में रियासती हुकूमत ने इम्तिहानी मराकज को रियायती कीमतों पर बस सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक जायजा मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। मीटिंग में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सिविल पुलिस कांस्टेबल और इसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान 2 शिफ्टों में 8, 9 और 10 जून को होगा। इस इम्तिहान में तकरीबन 2.9 मिलियन उम्मीदवारों के शिरकत की तवक्को है। वजीर आला ने वाजह हिदायत दी कि किसी उम्मीदवार को धूप में खड़ा न होना पड़े और इम्तिहानी मराकज में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट रियायती किरायों पर खसूसी बैनजिली बसें चलाएगा। गुज़िश्ता 12 सालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गैरमामूली तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम कारोबार करने में आसानी के शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर बात करेंगे।
3: सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे

0: अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की।
1: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: मीटिंग ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। बहनें अब सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को ललित वत्स का नमस्कार। आजकल हमारी बहनें बहुत व्यस्त होंगी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। बच्चों की ऐसे में दिन भर शैतानियां, मौज मस्ती। बहनों, सच पूछा जाए तो हमें खुलकर उन्हें उनका बचपन जीने देना चाहिए। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनका पालन पोषण स्वस्थ और अच्छे वातावरण में ही होना चाहिए। किसी भी गलत व्यवहार का उनके बाल मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के साथ किसी भी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ कानूनन अपराध ही नहीं बल्कि मानवता के विरुद्ध भी एक गंभीर अपराध है। बहनों, बाल शोषण के कारण बच्चों के मन पर बहुत गहरे घाव पड़ जाते हैं। इस वजह से उनमें भय, तनाव और यहाँ तक कि कभी कभी डिप्रेशन की समस्या भी देखी जाती है। कई बार तो इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। हम सभी को बच्चों के व्यवहार में होने वाले अचानक से बदलाव जो आते हैं उनके जीवन में, उन पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई बच्चा डरा हुआ, उदास, सहमा हुआ या फिर कभी कभी असामान्य व्यवहार करता दिखाई देता है, तो उसकी बात को हमें गंभीरता से सुनकर उसकी सहायता करनी चाहिए। भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार बने हुए हैं। तो बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम बच्चों को प्यार, सुरक्षा और सम्मान से भरा वातावरण देंगे। बच्चों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। बहनों, बच्चों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, उनके सपने सुहाने होते हैं। ये बचपन कभी वापस लौट कर नहीं आता, बस रह जाती हैं तो इस बचपन की खट्टी मीठी यादें।

बहनों, अभी हमें आपसे बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आज हमारे साथ हैं बहनों माधुरी जी। माधुरी जी, आजकल तो भाई छुट्टियां हैं तो बच्चे तो आपके घर में ही होंगे।
3: अरे ललित जी, बच्चे तो घर में ही हैं और जाएंगे कहाँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इन दिनों स्कूल की चल रही हैं छुट्टियां, तो बच्चे दिन भर घर में धमा चौकड़ी मनाते रहते हैं। और गर्मी इतनी है कि बच्चों को घर से हम बाहर जाने नहीं देते धूप की वजह से, तो बस ये समझ लीजिए कि दिन भर घर खिलौनों से बिखरा रहता है।
2: पूरे घर में बच्चों के खिलौने
3: खिलौने दिखते हैं।
2: हाँ, लेकिन आजकल माधुरी जी क्या है कि मार्केट में जो प्लास्टिक के खिलौनों की भरमार है, जहाँ भी देखिएगा ना प्लास्टिक के खिलौने हैं,
3: बिल्कुल
2: है ना। लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें ये समझना चाहिए कि खिलौने जो ये प्लास्टिक के हैं ये हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए ही नुकसानदायक होते हैं।
3: ललित जी, खिलौनों की बात की जाए तो ये खिलौने भी क्या खिलौने हैं। खिलौने तो वो होते थे जब हमारा बचपन था, जब हम नानी के जाते थे, दादी के जाते थे, मामी हमारी पुराने कपड़ों से हमें गुड़िया बनाना सिखाती थी, अपनी पुरानी साड़ियों से, चुनरियों से हम उनको सजाते थे, फिर उनकी शादियां करते थे।
2: अरे क्या बात है मामी जी, आपने अपने बचपन की याद दिला दी।
3: और इसके अलावा आपको याद हो वो क्रॉकरी सेट जो चीनी मिट्टी का होता था या फिर स्टील का बना हुआ होता था, और उससे हम लोग,
2: और दिवाली पे वो मिट्टी के भी
3: मिट्टी वाले भी, हाँ, और उनसे हम फिर उनमें सच का खाना बनाया करते थे। और आजकल जो बच्चे खेलते हैं वो प्लास्टिक के

0: क्रॉकरी सेट, वो भी कोई खिलौने है? मतलब ये
1: अरे
0: प्लास्टिक के खिलौने भी जब मान लीजिए खराब हो जाते हैं या बच्चे इधर उधर
1: हाँ
0: करते, किसी भी तरह से ये मतलब
1: हाँ
0: जमीन में या पर्यावरण में कहीं भी मिलते हैं, तो वो उसको नुकसान ही पहुंचाते
1: हाँ
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: खिलौने तो वो हुआ करते थे,
1: हाँ
0: और ये कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं।
1: हाँ
0: तो इसको ध्यान में रखते हुए
1: हाँ जो मतलब यहाँ भारत में बने हुए
0: बिल्कुल
1: खिलौने
0: बिल्कुल
1: हैं, अपने
0: मेक इन
1: भारत के
0: इंडिया के
1: खिलौने।
0: तहत
1: हाँ
0: हमें
1: बिल्कुल
0: स्वदेशी
1: बिल्कुल
0: खिलौनों के निर्माण को
1: हाँ
0: बढ़ावा भी देना चाहिए और उनको ही यूज करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब
1: ठीक
0: पहले
1: कहा।
0: कपड़े के, मिट्टी के, लकड़ी के बर्तनों के बने हुए खिलौने हुआ करते थे, या बांस के बने हुए खिलौने होते जिन्हें छोटे
1: हाँ
0: छोटे बच्चे भी अपने हाथों में खेलते थे, कुछ महीनों के बच्चे, 6 महीने के,
1: हाँ
0: 1 साल तक के
1: और
0: बच्चे।
1: देने में पता है क्या होता था कि नुकसान नहीं होता था
0: नुकसान नहीं
1: कुछ, है
0: होता
1: ना, छोटे
0: था
1: बच्चे के हाथ में भी दोगे तो
0: क्योंकि
1: कोई
0: बच्चा
1: नुकसान
0: खेलते
1: है,
0: खेलते कई बार उनको अपने मुंह में भी दे
1: मुंह में
0: लेता
1: दे
0: है ना, तो वो
1: हाँ।
0: उसको नुकसान नहीं करता था।
1: लेकिन वाकई यदि हम ये बात करें तो बचपन वाकई हमारा हुआ करता
0: हमारा
1: था, है
0: हुआ
1: ना।
0: करता था।
1: हम लोग खेलते भी थे, भाग दौड़ मचा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे कभी छुप जा रहे हैं, कभी खिलौनों से खेल रहे हैं, तो फिजिकल लेबर भी होती थी
0: वो
1: हमारी, है ना।
0: खिलौने और वो खेल भी हुआ करते थे, हम
1: हाँ
0: भागते दौड़ते भी थे, खेलते, और एक ही घर के अंदर सारे बुआ के, मौसी के, सबके मामाओं
1: हाँ
0: के बच्चे एक ही घर में खेल लेते थे। और आजकल खेल तो रहे ही नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी
1: हाँ
0: तो बच्चों की जैसे बंद ही
1: बिल्कुल
0: है, बच्चे
1: बिल्कुल
0: हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल गेम जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोबाइल ने क्या किया है कि उनका बचपन छीन लिया
0: बिल्कुल
1: है ना, क्योंकि जो बचपन हमने बिताया वो बचपन तो उनका रहा नहीं है अब, क्योंकि उनकी सारी दुनिया मोबाइल हो चुकी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो माधुरी जी एक वार्ता सुनवा देते हैं, मोबाइल के बीच बचपन, माता पिता और शिक्षक की चुनौती,
0: बिल्कुल।
1: और वार्ताकार हैं स्वाति सिंघल।
2: जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, माँ उसके पीछे प्लेट लेकर घूम रही है, बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है, रो रहा है। फिर माँ क्या करती है, मोबाइल निकालती है, वीडियो चलाती है, और अचानक बच्चा चुप, मुंह खुला, खाना अंदर। ये दृश्य नया नहीं है, आज ये लगभग हर घर की सच्चाई बन चुका है। लेकिन एक सवाल है, उस समय हम बच्चे को खाना खिला रहे होते हैं या मोबाइल की आदत? आज का विषय, मोबाइल के बीच बचपन, माता पिता और शिक्षक की चुनौती। मैं पेशे से स्कूल टीचर हूँ और रोज छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताती हूँ, पर सच कहूँ, पिछले कुछ सालों में बच्चों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें राइम्स याद हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, लेकिन जब आप उनसे आंख मिलाकर बात करते हैं तो वे नजरें चुरा लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन सोशल नहीं, और जब हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो पीछे एक कॉमन कारण मिलता है, मोबाइल एक्सपोजर, यानी मोबाइल की आदत। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाती हूँ, रियान, 3 साल का बच्चा, मोबाइल यूज करने में एक्सपर्ट, यूट्यूब खोलना, एड स्किप करना सब आता था। लेकिन जब हमने उससे कहा, बेटा बॉल पास करो, तो वह कंफ्यूज्ड हो गया। सोचिए, स्क्रीन की दुनिया में स्मार्ट लेकिन असली दुनिया में स्ट्रगल। धीरे धीरे हमने नोटिस किया, वह बच्चों के साथ खेलना अवॉइड करता था, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता था और किसी एक एक्टिविटी में ध्यान नहीं लगा पाता था। जब हमने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बहुत ऑनेस्टली कहा, मैम हमें लगता था मोबाइल से बच्चा सीख रहा है, कम से कम चुप तो रहता है। यहीं पर हमें एक बात समझनी होगी, चुप रहना और खुश रहना दोनों अलग चीजें हैं। फिर हमने पेरेंट्स को एक सिंपल बात कही, बच्चा स्क्रीन से नहीं आपसे सीखता है। हमने बहुत छोटे छोटे चेंजेस सजेस्ट किए, जैसे खाने के समय नो मोबाइल, रोज 20-30 मिनट आउटडोर प्ले यानी बाहर खेलकूद करना, सोने से पहले कहानी या बातचीत, और सबसे इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम। शुरुआत आसान नहीं थी, बच्चा रोया, मोबाइल मांगा, लेकिन पेरेंट्स ने कंसिस्टेंसी रखी और धीरे धीरे वही बच्चा खिलौनों से खेलने लगा और दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने लगा। और सबसे सुंदर बदलाव, वह मुस्कुराने लगा, बात करने लगा। असल में बच्चों को एक्सपेंसिव टॉयज नहीं चाहिए, उन्हें प्रेजेंस चाहिए। आज का बच्चा जल्दी बोर हो जाता है।

0: क्योंकि मोबाइल उसे हर सेकेंड नया एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन रियल लाइफ थोड़ी स्लो होती है, इसलिए पेशेंस कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है और इमोशनल कनेक्शन भी कम हो रहा है। आज बच्चे स्क्रॉल ज्यादा करते हैं और फील कम। यहाँ माता पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा आपको हर समय मोबाइल में देखेगा तो वह भी यही सीखेगा, लेकिन अगर वह आपको हंसते, बात करते, खेलते देखेगा तो वही उसके लिए नॉर्मल बन जाएगा। स्कूल में भी हमें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना है। बच्चों को चाहिए एक्टिविटी, ग्रुप प्ले, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग और रियल इंटरैक्शन, क्योंकि बच्चा सुनकर नहीं करके सीखता है। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन बिना लिमिट के मोबाइल बचपन को रिप्लेस कर देता है। तो क्या करें? बहुत सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्क्रीन टाइम फिक्स करें, खाना बिना मोबाइल के खिलाएं, सोने से पहले नो स्क्रीन, नो गैजेट फैमिली टाइम रखें और सबसे इम्पोर्टेंट खुद एग्जाम्पल बने। बच्चा एक पौधे की तरह होता है, अगर उसे सिर्फ स्क्रीन की रोशनी मिलेगी तो वह ग्रो तो करेगा लेकिन अंदर से कमजोर रहेगा, लेकिन अगर उसे समय, प्यार और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वही पौधा मजबूत बनेगा। इसलिए आइए हम ये समझें, मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है लेकिन बच्चे का पूरा बचपन नहीं, क्योंकि बचपन स्क्रीन में नहीं रिश्तों में खिलता है, अनुभवों में खिलता है और हमारे साथ बिताए गए समय में खिलता है। ये सही है कि आज सूचना क्रांति ने सारी दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान तो आसान और तीव्रतम हुआ ही है, साथ ही मोबाइल ने हमारे बोझ भी बहुत कम कर दिए हैं। एक मोबाइल की सहायता से हमने घड़ी, लैपटॉप या डेस्कटॉप, म्यूजिक प्लेयर, कंपास, ऑडियो रिकॉर्डर, स्टिल एवं वीडियो कैमरा, हेल्थ चेकअप के उपकरण और न जाने क्या क्या, हर कुछ तो छूट गया। अब एक मोबाइल ही हमारी ढेर सारी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो गया है। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन बन गया है ये मोबाइल, परंतु इसके साथ बहुत से प्राकृतिक वस्तुएं भी छूट गई हैं हमसे। हमने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, अब कलम के बजाय टच स्क्रीन पर टाइप करना सहज हो गया है, फलतः सुंदर और कलात्मक लिखावट कहीं खो गई। अखबार और किताबें पढ़ना दूर हो गया तो सभी के हाथ मोबाइल को थामने और उंगलियां स्क्रॉल करने की आदि हो गईं। ये सारी चीजें बड़े बुजुर्ग तो कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन तो जी लिया है, परंतु उनका क्या जिन्होंने अपनी जिंदगी की अभी शुरुआत ही की है। जी हाँ, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। 2 से 3 साल के बच्चे भी मोबाइल के आदी हो रहे हैं। उनके हाथ से मोबाइल ले लो तो वह रो रो कर घर आसमान पर उठा देते हैं। फिर उनका प्राकृतिक रूप से हंसना, रोना, नखरे दिखाना तो गुम ही हो गया है। उनकी सीखने की इच्छा और क्षमता दोनों ही खत्म हो रहे हैं। एक बार मोबाइल थाम लिया तो छोड़ने का नाम नहीं। फिर कैसे उनका मन लगेगा दोस्तों में, स्कूल में या परिवार में? तो आवश्यकता है कि किशोरावस्था तक पहले उन्हें मोबाइल ना दे अथवा किसी भी गैजेट से उन्हें दूर रखें। कागज पर लिखकर पढ़ना लिखना सीखना, गणना करना और गणितीय सवालों का हल करना बच्चों के मस्तिष्क को प्राकृतिक रूप से विकसित बनाता है, परंतु कैलकुलेटर, मोबाइल या कंप्यूटर हमारी इन क्षमताओं को छीन करता है। अतः हम सभी माता पिताओं, अभिभावकों और शिक्षकों को यह परम कर्तव्य है कि बच्चों को मोबाइल के साथ यथासंभव दूर रखें और पूर्णतः नहीं तो कम से कम इतना ही करें कि बच्चा 1 या 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम ना रखे। फिर देखिए बच्चे कितनी तीव्र बुद्धि वाले होंगे, उनका न केवल व्यक्तित्व निखरेगा बल्कि वे बोल्ड, दयालु और आत्मविश्वास से भरपूर भी होंगे।
1: तो बहनों, अभी आपने सुनी स्वाति सिंघल से वार्ता, मोबाइल के बीच बचपन, माता पिता और शिक्षक की चुनौती। बहनों, आपने कुछ घरों में अक्सर देखा होगा कि बच्चों को पिता या माँ का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो उनके सामने कुछ बोलते ही नहीं हैं, यानी वो जब सामने आते हैं तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जबकि हमें उन्हें ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वे अपने मन की

बात आपके साथ शेयर कर सकें। उनके व्यक्तित्व का विकास काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि बड़े उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि माता पिता, शिक्षक और अभिभावक बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं तो बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। बहनों, दोस्ताना व्यवहार का मतलब अनुशासन खत्म करना नहीं होता कि भाई आप दोस्ताना व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चों पर से अनुशासन ही हट गया, बल्कि बच्चों की भावनाओं को समझना और उनकी बात को सुनना, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर देना होता है। जब बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी बातों को माता पिता महत्व दे रहे हैं, तो वे अपनी समस्याएं, अपने डर, अपने सपने खुलकर आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करनी चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं का सम्मान करना चाहिए, गलतियों पर डांटने की जगह उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आज की व्यस्त जिंदगी में बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। उनके साथ खेलना, बातचीत करना और उनकी रुचियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके ध्यान रखने से ही वे तरक्की करेंगे और तभी पापा भी बच्चों की उपलब्धि पर गर्व करके ये कह उठेंगे।

बहनों, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में तेज धूप और बढ़ता तापमान हम सभी को परेशान कर देता है। ऐसे में हर व्यक्ति घर को ठंडा रखने का उपाय खोजता है। खस ब्रांड्स एक प्राकृतिक और पारंपरिक विकल्प है। इसे खिड़कियों और दरवाजों पर लगाया जाता है और समय समय पर इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। जब गर्म हवा इन नम खस की जड़ों से होकर गुजरती है तो वे ठंडी और सुगंधित हो जाती है। यही कारण है कि पहले के समय में खस की पर्दी

गर्मियों में घरों की शान हुआ करते थे। खास ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। बिजली की बचत करने वाले और प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाले होते हैं। इनमें से आने वाली भीनी भीनी खुशबू मन को भी ताजगी का एहसास कराती है। उसे पार करके आती ठंडी हवाएं ऐसा लगता है जैसे लहरा के हमारे मन में उतर रही हो।

और बहनों, घर संसार कार्यक्रम में कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अपनी सखी ललित वत्स को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बहनें भी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार राजेंद्र मेहता और नीना मेहता द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। पहली गजल जो आप अब सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं, फूल बरसे कहीं शबनम कहीं।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार राजेंद्र मेहता और नीना मेहता द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। दूसरी गजल जो अब आप सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं एक प्यारा सा गांव।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार राजेंद्र मेहता और नीना मेहता द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें, और कार्यक्रम था सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया मिड डे न्यूज की प्रतीक्षा करें।

0: धन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का

0: संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन

0: की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे पंडित रामकृष्ण द्वारा क्लैरिनेट वादन। पंडित रामकृष्ण द्वारा आप सुनेंगे धुन मिश्र पहाड़ी में क्लैरिनेट वादन और कार्यक्रम है उपशास्त्रीय संगीत।

श्रोता भी सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण द्वारा धुन मिश्र पहाड़ी में क्लैरिनेट वादन। इस समय आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित निखिल बनर्जी द्वारा धुन मांड में सितार वादन।

श्रोता भी सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी द्वारा धुन मांड में सितार वादन, और कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संकेत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दस्तक से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और इस गीत को लिखा है मजरूर ने, और इस गाने में अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। संगीत निर्देशन है नौशाद का और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने। फिल्म का नाम है आन।

इस मधुर गीत को अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में फिल्म आन से। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का अगला नगमा आप सुनेंगे गीता दत्त की आवाज में फिल्म चंदन से, जिसमें संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे फिल्म देख कबीरा रोया से मन्ना डे की आवाज में। संगीत निर्देशन मदन मोहन का और शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की।

इस और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म पिया मिलन से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं हेमलता और रत्नेश सिंह ने। संगीत निर्देशन है रविंद्र जैन का और इस गीत को लिखा भी रविंद्र जैन ने ही है।

फिल्म पिया मिलन से इस गीत के बाद आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत कार्यक्रम गीत गुंजन में, जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सोहनी महिवाल से। इस गीत में अपनी आवाजें दी हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे हम फिल्म संतोष से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने और इस गीत में संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं इस मीठे से नगमे को कार्यक्रम गीत गुंजन में।

यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी, इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म संतोष से। श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म बहार आने तक से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास ने, साथ इनका दिया है साथियों ने। इस गीत में संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और इस गीत को लिखा है इब्राहिम अश्क ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को कार्यक्रम गीत गुंजन में।

0: और इस गाने के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय है बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा। इस विषय पर आप सुनेंगे जिला मनोविज्ञान केंद्र आगरा के प्रभारी डॉक्टर साहब सिंह से अनिंद सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, हर साल 4 जून को पूरी दुनिया में एग्रेशन यानी आक्रामकता के खिलाफ जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, उनको बचाने के प्रति जागरूकता प्रदर्शित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य रहता है कि ऐसे बच्चों को, उनकी पीड़ा को, उनके मनोभावों को समाज ध्यान दे, समझे, और जो भी उनको मानसिक प्रताड़ना होती है, जिसके वो शिकार होते हैं, किसी भी तरह के शोषण के, उपेक्षा के या आक्रामकता के, उनके प्रति एक जागरूकता समाज में आए। इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब सिंह जी हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: साहब सिंह जी, देखिए, आजकल जो घरों का माहौल है, बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं, वो बदल चुकी हैं
2: जी।
1: घरों में भी तनाव बढ़ रहा है, जो हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है, पूरी दुनिया में वैश्विक तनाव भी हमें नजर आ रहा है
2: जी।
1: और जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास सोशल मीडिया का प्रेशर है
2: जी।
1: और इन सब का प्रभाव हम पर तो पड़ता ही है, साथ में सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बच्चे होते हैं
2: जी।
1: उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है ना। तो

0: ये जो हम दिवस मना रहे हैं इस पे अगर हम फोकस करें तो आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे कहा जाता है, तो इसको मनाने की आवश्यकता और जो एग्रेशन है उसको
1: जी
0: आप किस तरह से डिफाइन करेंगे?
1: देखिए सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आज के समय में बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। जो मासूम बच्चे हैं, वो मासूम बच्चे का मतलब होता है जो छल कपट, बुराई, स्वार्थ, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती।
0: बच्चों को भगवान का रूप
1: भगवान
0: कहा
1: का रूप
0: जाता है,
1: कहा जाता
0: बच्चे
1: है,
0: मन के
1: सच्चे
0: सच्चे।
1: होते हैं। ऐसे बच्चों को आजकल जो आजकल भागम भाग वाली जिंदगी है उसमें सब लोग स्ट्रेस से प्रभावित हैं,
0: जी,
1: और उसका प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ता है। बच्चे कहीं ना कहीं अनेकों रूप से इस आक्रामकता के शिकार होते हैं, जो कि बहुत ही चिंतनीय विषय है। ये आक्रामकता एक प्रकार की नहीं होती, एक ऐसा व्यवहार होता है जिसका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति, किसी जीव, किसी वस्तु को जानबूझकर मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना होता है, जो अक्सर गुस्से, हताशा या किसी पर हावी होने की इच्छा से पैदा होता है।
0: मतलब कोई इंटेंशनल वो नहीं है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं
1: जी
0: वो इस तरह का मोल्ड कर देती हैं कि वो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में आके एग्रेसिव हो जाते हैं, और बच्चों में भी उसके असर जो है वो देखने
1: देखने
0: को
1: को
0: मिलते
1: मिलते
0: हैं,
1: हैं।
0: वो शारीरिक तौर पे आपने जैसा कहा और भावनात्मक तो होते ही हैं। और भी कुछ तरह के एग्रेशन हैं जो बच्चों में नजर आते हैं?
1: जी, जो एग्रेशन है वो कई प्रकार के होते हैं। एक
0: जी,
1: शारीरिक आक्रामकता होता है, शाब्दिक आक्रामकता भी होती
0: मतलब
1: है,
0: हम
1: यानी जो
0: कुछ शब्दों
1: शारीरिक
0: के
1: रूप
0: जरिए।
1: से, यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को डंडे से पीटना या किसी को धक्का दे के गिरा देना, ये शारीरिक आक्रामकता के
0: ठीक
1: अंतर्गत
0: बात।
1: आता है। किसी को जैसे गाली देना, अपशब्द कहना, तो जिससे कि उसे बुरा लगे, इस तरह की आक्रामकता होती है, वो शाब्दिक आक्रामकता के अंतर्गत
0: शब्दों
1: आती
0: के
1: है।
0: जरिए
1: जी,
0: आपने
1: शब्दों
0: उसको
1: को,
0: भला
1: जी,
0: बुरा कह के
1: उसे चोट
0: चोट
1: पहुंचाई
0: पहुंचाई। ठीक,
1: ना। कुछ भावनात्मक या आवेगी आक्रामकता भी होती है, भावनात्मक रूप से, यानी उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। भावनात्मक रूप से वो लगाव मान रहा है किसी व्यक्ति से, उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, और उसे पता चला कि ये दिखावटी व्यवहार था। तो इस तरह का जो आक्रामकता होती है ये भी होती है। एक रणनीतिक आक्रामकता भी पाई जाती है, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो अपने व्यवसाय में या अपने जिस फील्ड में काम करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए प्लानिंग के द्वारा किसी दूसरे को चीट करते हैं। चीट करके, उन्हें उकसा करके कुछ ऐसे गलत कार्य कराए जाते हैं जिससे उनकी गलती हो और वो अपने काम
0: एग्रेसिव होके और वो गलती करें,
1: गलती करें।
0: इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो हमें
1: जो
0: स्पोर्ट्स में देखने
1: स्पोर्ट्स
0: को
1: में
0: मिलता
1: देखने
0: है
1: को मिलता
0: खासतौर
1: है,
0: पे। हाँ,
1: जैसे अगर कोई बैट्समैन बैटिंग अच्छी कर रहा है, वो आउट नहीं हो रहा, तो उसे विपक्षी टीम जो है स्लेजिंग करती है, और स्लेजिंग करके उसे गलत शॉट खेलने के लिए बाधित कर देते हैं।
0: ठीक
1: ये
0: बात।
1: घरों में भी मिलती है सर, देखने को घरों में भी अक्सर देखा होगा। एक व्यक्ति को जो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, उसकी सब तारीफ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग उन्हें देखते हैं कि इसके बड़ी तारीफ हो रही है, तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच के इस तरह की घटनाएं कराई जाती है, उकसाया जाता है उसके खिलाफ। तो
0: ठीक
1: ये
0: बात।
1: प्रकार की आक्रामकता ही होती है।
0: ये जो आपने इतने सारे कारण बताए आक्रामकता के, इनके मतलब अगर हम पीछे इनके कारणों पे जाएं, ये आक्रामकता जैसे एक तो आपने कहा कि हताशा में होती है, इसके मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते
1: बहुत
0: हैं
1: सारे
0: अगर हम
1: रीजन।
0: समझना चाहें तो, क्या किन वजहों से होती है ये?
1: सर, इसका एक तो देखो, सबसे पहला रीजन हर चीज का माना जाता है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जन्म से ही कुछ व्यक्तियों की मानसिक संरचना पूर्ण नहीं हो पाती, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती है ब्रेन डेवलपमेंट में, वो भी एक कारण होता
0: तो
1: है।
0: वो एग्रेसिव
1: वो
0: व्यवहार
1: एग्रेसिव
0: करेगा,
1: व्यवहार करता है, मतलब वो सामान्य व्यवहार नहीं करता, वो स्वतः ही
0: मतलब
1: गुस्सैल प्रवृत्ति
0: हाँ
1: का होगा,
0: ठीक बात।
1: और इसमें कई बार आनुवंशिक लक्षण भी होते हैं जैविक के अंतर्गत। एक जैसे परिवार में उनके माता पिता
0: बीपी के
1: पूर्वजों
0: मरीज हैं, जल्दी बीपी बढ़
1: वो ज्यादा
0: जाता
1: वो गुस्साईबाज होते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता रहता है, तो वो भी
0: है।
1: आनुवंशिक कारण हो जाता। कई बार जो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स होते हैं उनका असंतुलित होना भी, ये भी एक कारण होता है,
0: हार्मोनल इम्बेलेंस।
1: हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं, पर्यावरण यानी जो जैसा माहौल मिलता है बच्चे को। हम सभी जो है किसी न किसी समाज के अंग होते हैं,
0: हिस्सा
1: किसी न
0: होते हैं,
1: किसी
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण में रहते हैं, उसमें जैसा माहौल होता है, एक तो जैसे गंदी बस्तियों में ये देखा गया है कि जो गंदी बस्तियां होती हैं वहां का माहौल स्वतः ही एग्रेसिव होता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े करना, छोटी छोटी बातों पर सुबह उठने से लेकर शाम तक
0: कुछ
1: बात
0: ना
1: पर
0: कुछ
1: झगड़ा
0: तू-तू
1: होता
0: में
1: रहता है।
0: चलती रहेगी।
1: दूसरा, नशेबाजी का, जहाँ नशा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है लोगों में, वहां आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और जो तनाव तनावपूर्ण माहौल होते हैं, वहाँ आपस में एक दूसरे से

0: पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती है तो वहाँ किसी न किसी बहाने से हर समय मुतनाव बना रहता है, तो जिसमें आक्रामकता होती है। कुछ सामाजिक आक्रामकता भी होती है। सामाजिक आक्रामकता में इस तरह जैसे समाज में रह रहे हैं उनमें किसी दो समुदाय हैं, उन दो समुदायों में आपसी टकराव होता है, तो बात बात पर झगड़े होते हैं, घरेलू हिंसा भी इसी में आती है।
1: तो ये ऐसे कारण हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। और आजकल की दुनिया है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो घुस गई है उस वजह से भी बहुत सारे।
0: सर आजकल जो सबसे प्रभावशाली और सबसे नया कारण निकल के आया है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और ऐसा कोई नहीं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं।
1: ठीक।
0: अब उसमें कंटेंट ऐसे ऐसे आते हैं कि जो सोशल मीडिया पे या तो किसी धर्म के प्रति नफरत फैलाई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टियों के प्रति
1: आपके
0: फैलाई जाती
1: अंदर
0: है।
1: के जो भाव हैं उनको उद्वेलित किया जाता है और आपकी संवेदनाओं को कहीं ना कहीं इस तरह से मोल्ड किया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है इस तरह से कि आप थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर, जाहिर सी बात है हमारा शरीर जो है बायोलॉजिकल है और वो जो हार्मोन्स उन चीजों के प्रभाव में हमारे शरीर में पैदा होते हैं उनका असर जो है वो आक्रामकता के रूप में हमें दिखाई देता है।
0: और दूसरा सर बच्चों में ये देखा गया है कि जैसे मोबाइल यूज करते हैं, नई टेक्निक आई है AI, अब जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में बच्चे के जो मन में आया एक क्लिक पर उसे उपलब्ध है। अगर वास्तविक जीवन में उसे किसी इच्छा को पूरी होने में समय लगता है तो वो तुरंत आक्रामक हो जाता है, तो उसमें धैर्य की कमी हो जाती है और धैर्य की कमी के कारण वो तुरंत आक्रामकता प्रदर्शित करता है। तो ये साइड इफेक्ट है बच्चों के ऊपर।
1: उसके बहुत सारे रीजंस हैं अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो ये तकनीकी आपने कहा जो एकल परिवार व्यवस्था आजकल है वो भी एक
0: वो मुख्य कारण है। एकल परिवार भी एक है, दोनों गार्जियन जो जॉब पे हैं, बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं।
1: ठीक बात है डॉक्टर साहब। कई बार बच्चे अपनी पीड़ा खुल के व्यक्त नहीं कर पाते
0: जी,
1: तो ऐसे कौन से व्यवहारिक संकेत होते हैं जिनसे घर वाले या अभिभावक ये समझ पाएं कि बच्चा किसी मानसिक दबाव या उत्पीड़न का शिकार है?
0: देखिए सर, इसमें सबसे पहला तो बच्चा जो है जो अपनी इंटरेस्ट की चीजें हैं ना, रुचि वाली चीजें वो करना बंद कर देता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है, घर में एकांत ढूंढता है, घर वाले लोगों से बातचीत न करना और अपने रूम में चला गया, और जो उसे दुनियादारी चीजों से मतलब वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता
1: चुप्पी,
0: है, चुप्पी साधना शुरू कर देता है। अगर उससे कोई पूछता है तो वो ये कहता है कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, और फिर अगर कोई ज्यादा प्रेशर देता है तो वो एकदम आक्रामक हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो अगर इस तरह का कर रहा है तो बच्चे को जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए गार्जियन को, और उसे इसके लिए सबसे पहले वो ये है कि उसे प्यार से, उसको बजाय प्रेशर के उसे प्यार से उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उसको समझना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है बच्चे के साथ इस तरह का बच्चे को समझना।
1: और कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि घर में बच्चा अच्छा कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे मतलब उसका परफॉर्मेंस है, और अचानक ही उसमें बहुत
0: डाउन
1: चला जाता है।
0: जी डाउन चला, यही है वो, या तो स्कूल में किसी बुलिंग का शिकार हो रहा है या उसे किसी ने टीचर ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो उसके
1: पिंच करके
0: उसे ठेस पहुंची है, ईगो हर्ट हुआ उसका, तो इस तरह की चीजें बहुत सारे टीचर्स को भी ये पता नहीं होता, बहुत सारे बच्चे को करते तो मोटिवेट करने के लिए हैं, उन्हें ताना मार देते हैं को वो जो है,
1: अगर लेकिन कभी कभी वो बात
0: छुप जाती है तो वो बच्चे गहरा असर डालती है उसके मन पे।
1: तो ये संकेत जो है हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए और बच्चे
0: जी,
1: को
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: उसी तरह से कॉन्फिडेंस में लेके और उसका ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में इस मोड़ पर अगर मैं कहूं आपको कि कोई गीत सुनवाएं तो क्या सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं?
0: जो बच्चों का है तारे जमी पे मूवी का है ये, क्योंकि हमारे जो बच्चे हुए हैं स्टार होते हैं, वो जीवन का भविष्य यही है, तो जो तारे जमी पे है गाना उसको अगर सुनवाएं तो बेहतर होगा।
1: तो सुनवाते हैं श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत तारे जमी पर।

0: डॉक्टर साहब, ये सब चीजें आपने जो बताई, इतने
1: जी
0: सारे कारण बताए, इतने सारे पहलू हैं उसके, कि आप अगर शुरू करेंगे तो बहुत समय लगेगा।
1: जी
0: अब हम इसके निदान खोजते हैं कि
1: जी
0: साहब, ये समस्याएं तो हैं, हमारे
1: हाँ
0: इर्द गिर्द बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे
1: जी
0: कारक हैं
1: बिल्कुल, इन्हें
0: जिनकी
1: हटाया
0: वजह
1: नहीं जा
0: से
1: सकता,
0: ये चीजें आएंगी ही आएंगी,
1: आएंगी
0: है ना।
1: आएंगी।
0: अब मेन चीज है कि खुद और खास तौर से जो बच्चे हैं,
1: जी
0: मासूम बच्चे, जैसे आपने कहा कि बच्चा तो बच्चा होता है,
1: जी
0: लेकिन उसको इन सब कारकों से, इन सब प्रभावों से कैसे बचाया जाए, उसके आसपास वो सुरक्षा का आवरण कैसे तैयार किया जाए, उस पहलू को जो है आप हमारे श्रोताओं के साथ
1: जी
0: साझा करें।
1: देखिए, सबसे पहले तो बच्चे जैसे बिल्कुल मासूम होते हैं, उन्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आते हैं, जैसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, वो सीखते हैं। तो आक्रामकता भी एक सीखा हुआ व्यवहार है, ये जन्मजात नहीं होता है।
0: और सबसे ज्यादा जो
1: जी
0: बच्चे संपर्क में रहते हैं वो माता पिता
1: माता
0: के
1: पिता
0: रहते
1: के
0: हैं,
1: संपर्क में रहते
0: तो
1: हैं।
0: वहां से एग्रेशन अगर उन्हें कम देखने को मिलता है
1: जी
0: तो वो बहुत हद तक वहीं सप्रेस किया जा
1: जी
0: सकता है।
1: सर, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ही माता पिता की है। अगर बच्चे को इन एग्रेशन से किस तरह से बचाना है, किस तरह से बच्चे को एग्रेशन हैंडल करना सिखाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो गार्जियन को सबसे पहले चाहिए कि बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करें। असुरक्षित माहौल हो उससे बच्चे को दूर रखें। जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहां बच्चों को दर्शक न बनने दें, उन्हें तुरंत वहां से दूर घर ले
0: ये
1: जाएं।
0: आम मतलब
1: आम
0: ये
1: बात है ना,
0: धारणा
1: जैसे कहीं
0: होती है
1: झगड़ा
0: कि
1: हो रहा
0: कहीं
1: है, कहीं
0: हो रहा
1: उसे
0: तो हम
1: सुनने लग
0: खड़े हो
1: जाते
0: जाते हैं।
1: हैं, खड़े हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं, तो बच्चों को ऐसी दर्शक न बनने दें, वहां से हटाएं। दूसरा, जो बच्चे सबसे ज्यादा आजकल सीख रहे हैं वो सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, यानी जो गैजेट्स यूज करते हैं बच्चे, उसमें जो उनके
0: सोशल
1: गेम्स
0: मीडिया
1: भी,
0: प्लेटफॉर्म्स
1: सोशल
0: हैं।
1: मीडिया प्लेटफॉर्म है, और बच्चे जो गेम्स भी खेलते हैं उसमें भी
0: आजकल
1: वो
0: गेम्स भी ऐसे
1: गेम्स
0: हैं
1: भी
0: बहुत
1: ऐसे हैं
0: एग्रेसिव,
1: रे,
0: जहां पे बस
1: जी जी बस वो मार धाड़
0: मार
1: वाले
0: धाड़ वाली
1: हैं,
0: चलती
1: वही
0: है।
1: गोली चल रही है। तो इस तरह के गैजेट्स से दूर रखना है। और जहां तक हो इन चीजों को बचाने के लिए आजकल मोबाइल में ऐप भी आता है,
0: कंट्रोल लॉक लगा
1: कंट्रोल
0: देते
1: लॉक
0: हैं।
1: होता है ना,
0: हाँ
1: उसका यूज करें।
0: ठीक बात है।
1: तो ये है, कुछ सकारात्मक माहौल से जोड़ें बच्चों को इस तरह की चीजों में, जैसे स्पोर्ट्स वाले क्लब हैं या कुछ ऐसी चीजें जहां पे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, नियम।
0: म्यूजिक एक बहुत
1: जी
0: अच्छा
1: जी
0: एरिया होता है,
1: म्यूजिक, कोई म्यूजिक सीखने के
0: संगीत
1: लिए,
0: सीखना,
1: संगीत
0: कुछ गाना
1: सीखना, जी
0: बजाना।
1: जी इस तरह के चीजों से जोड़ें तो निश्चित रूप से उनकी आक्रामकता से बचाया जा सकता है।
0: अच्छा, ये जो आपने घर की बात की थी,
1: जी
0: तो घर के भीतर का जो माहौल है वो बहुत हद तक बच्चे को प्रभावित करता है,
1: बिल्कुल
0: तो घर का माहौल वो बहुत शांत होना चाहिए, बहुत ही जिसमें
1: जी
0: ओपननेस
1: जी
0: होनी चाहिए।
1: गार्जियन को सबसे पहले ये समझना होगा कि बच्चा केवल स्कूल में नहीं सीखता, सबसे ज्यादा वो माता पिता से सीखता है। तो घर का माहौल, जैसे कई जगह देखा जाता है कि पति पत्नी में कम बनती है, या बात बात पे वो जो आक्रामक होकर जवाब देते हैं एक दूसरे को, तो बच्चे को बचाने के लिए ये उनको पहले खुद को कंट्रोल करना होगा। और खुद को कंट्रोल के लिए बच्चा है अगर घर में, तो उसके सामने बहुत शांति से बात करनी होगी, अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, और घर का माहौल एकदम शांत रखने की जिम्मेदारी उनकी होगी।
0: बच्चे को सिखाते
1: जी
0: सिखाते आप भी अगर सीख लेते
1: जी
0: हैं
1: जी
0: तो आपका भी जो पारिवारिक जीवन है
1: वो
0: वो भी
1: बहुत
0: बेहतर हो
1: वो मधुर
0: सकता
1: संबंध हो जाएंगे।
0: है।
1: खुली बातचीत होनी चाहिए, ओपन।
0: ये तो

0: का माहौल हो गया, माँ बाप का हो गया, स्कूल का आपने बात किया, एक और जो पीयर प्रेशर का
1: जी जी
0: जिक्र यहाँ मैं करना चाहूंगा, वो भी बहुत प्रभाव डालता है।
1: जी बिल्कुल, जब स्कूल के बाद सबसे ज्यादा बच्चा प्रभावित ही अपने साथियों के द्वारा होता है, तो ये पीयर प्रेशर में कई बार ऐसे निर्णय लेता है कि सब साथ वाले बोल रहे हैं कि भाई वहां चलना है, ये काम करना है, और जो अनैतिक काम है वो कर जाते हैं। तो बच्चों को ना कहना सिखाना है सबसे पहले, उन्हें ये बताना है कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स ये स्कूलों में सिखाई जाती हैं आजकल, और उसके अलावा बच्चों को ये समझाना है कि जो अच्छी चीजें हैं केवल उन्हीं के लिए हाँ कहनी है, अगर अच्छी चीज नहीं है तो उनके लिए आप ना कहना सीखिए,
0: बाउंड्री आपको बनानी
1: पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं सीखेगा तो बच्चा जो है भटक जाएगा। इस चीजों को सिखाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
0: ठीक बात।
1: और बजाय ग्रुप के साथ में या दोस्तों के साथ जो काम करता है उसके अलावा उसे सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए, उसे अपना काम खुद करने दें,
0: वो भी एक रोल मॉडल किसी के लिए बन पाए, ऐसा प्रयास जो है बच्चे को
1: सबसे पहले माँ बाप को ये इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए कि जो बच्चा आप ही को अपना मॉडल माने, इस तरह का। और अक्सर बच्चे मानते हैं, माँ बाप को ही अपना मॉडल मान लेते हैं, तो इसलिए कुछ चीजें जो बच्चे को आप सिखाना नहीं चाहते वो बच्चे के सामने कभी न करें।
0: अब आपने जैसे तकनीक की बात की थी, मोबाइल की बात की थी, तो हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम मोबाइल यूज करे
1: जी,
0: स्क्रीन टाइम उसका कम हो
1: जी,
0: स्क्रीन से दूर रहे, लेकिन हम जब तक खुद नहीं करेंगे
1: जी जी
0: तब
1: जी,
0: तक वो काम शायद मुश्किल है।
1: मैंने पहले ही बताया कि बच्चा जो है हमेशा देख करके सीखता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बच्चे के सामने स्मोकिंग करूं और बच्चा न करे तो ये संभव नहीं है। आप जैसा सिखाना चाहते हैं तो पहले त्याग माता पिता को करना होगा।
0: चलिए, अब बच्चों में आक्रामकता हो या उनका जो एक चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है
1: जी,
0: उसके कारण क्या होते हैं? एक तो ये आपने कुछ चीजें बताई
1: जी,
0: लेकिन और भी कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से उनमें एग्रेशन आता है
1: जी। इसमें सबसे पहले तो बच्चा जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता,
0: आजकल खास तौर से ये चीजें ज्यादा पेश आ रही,
1: जो अपने मन की बातें हैं ना, जैसे उसे मान लीजिए कोई चीज बहुत खराब लग रही है लेकिन उसे बता नहीं पाएगा कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं। बच्चे आजकल क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी का युग ऐसा आ गया है कि बच्चे को माता पिता की और जो बड़ों की जो ज्ञान देने वाली बातें हैं ना वो अच्छी नहीं लगती, तो वो मना तो कर नहीं पाता, तो वो या तो सिर पकड़ लेगा या किसी चीज को फेंक के मारेगा, है ना, तो इस तरह तोड़ फोड़ वाला चीज सीखता है,
0: जो उसके अंदर खीज है
1: जी
0: और अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने की हताशा है
1: जी,
0: वो किसी न किसी रूप में जाहिर करेगा।
1: तो इसलिए अच्छा है उस बच्चे को ये बताएं कि जो आप फील कर रहे हो वो आप हमें फ्रेंकली कहें। अगर आपको हमारी कोई बात खराब लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आप कह सकते हैं कि ये बात मुझे बुरी लग रही है।
0: ठीक बात।
1: तो इस तरह से भावनाओं को अगर व्यक्त करना सीख जाएगा तो उसकी आक्रामकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी।
0: आजकल जैसे स्क्रीन टाइम की बात हम कर रहे थे, स्क्रीन टाइम ने लोगों की नींद भी खराब की है
1: जी,
0: वो भी एक बड़ी समस्या है।
1: सबसे ज्यादा इफेक्ट जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में जो तनावपूर्ण परिस्थिति जो उत्पन्न कर रहा है वो स्क्रीन का यूज है, तो इसलिए इसको सीमित करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, जो एक इसमें जो नीले रंग की स्क्रीन है ना, वो जो नीला रंग जब सोने से पहले अगर बच्चा मोबाइल देख के या गैजेट्स देख करके सोता है तो उसे स्ट्रेस वो बना रहता है पूरी रात, तो रात में उसको नींद प्रॉपर नहीं आती। जब नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो सुबह उठ के वो उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा।
0: ठीक।
1: तो इसलिए आवश्यक है कि एक सोने का निश्चित टाइम टेबल निर्धारित करें, पूरी दिनचर्या निर्धारित करें, जिससे कि किस समय जगना है किस समय सोना है वो निर्धारित होगा, तो निश्चित रूप से
0: ये जो चीजें हैं
1: स्ट्रेस से दूर रहेगा,
0: दूर रहेंगे
1: जी।
0: आपका स्क्रीन टाइम अगर निर्धारित होगा तो आपको नींद भी बेहतर आएगी
1: जी।
0: आप अगर समय से उठते हैं, अपनी दिनचर्या को फिक्स करके रखते हैं, शारीरिक अगर कुछ गतिविधियां हैं उनमें भी हिस्सेदारी करते हैं,
1: बिल्कुल
0: आप इन
1: सुबह उठते उसे व्यायाम की अब जरूर आदत डालें, कुछ न कुछ एक्सरसाइज बच्चे को जरूर सिखाएं। अब इन दिनों में छुट्टियां चल रही हैं, तो छुट्टियों में जो बच्चों को सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ ले जाएं या पार्क में ले जा करके उन्हें कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराएं और मोबाइल की एक्टिविटी से अधिक दूर रखें।
0: एक और जो मसला आजकल देखने में आता है आमतौर पे स्कूलों में
1: जी,
0: वो साइबर बुलिंग
1: है ना जी,
0: वो उस पे भी अगर थोड़ा बच्चों को या हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहे। तो
1: साइबर बुलिंग मतलब ये जो कंटेंट आते हैं ना, ये कहते हैं ना अल्प ज्ञान खतरे की घंटी।

0: होती है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, तो वो वाली कंडीशन है। बच्चे को पूरा ज्ञान होता नहीं टेक्नोलॉजी का उस समय, तो उसमें जो चतुर लोग हैं, जो एक तरह से ये कहें कि उनके माफिया, वो बच्चों के गेम्स इस तरह के डेवलप कर रहे हैं कि जिसमें बच्चों को, जैसे अभी एक ब्लू व्हेल गेम शुरू में आया था स्टार्टिंग में,
1: तो कई
0: हाँ, आया था, तो उसके जो फाउंडर जो पकड़ा गया था, तो उसने ये बताया था कि ये जो बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं ये समाज के लिए यूजलेस हैं, तो ऐसे बच्चों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है ऐसे लोगों समाज में। तो इस तरह की सोच, यानी वो नेगेटिविटी उसके अंदर ये थी, तो वो उसका ये सोचना था इस तरह के बच्चों की लत लगाकर जो इसमें फंसता है उसे समाज से हटा दो। तो इस तरह के ये लोग हैं, इनसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए प्रॉपर स्कूलों में भी इस चीज की प्रॉपर नॉलेज दी जाए, और गार्जियन को भी सबसे पहले इन चीजों का खुद को पता करके और ये सारी चीजें बताई जाएं। और रियलिटी आजकल ये हो रहा है कि एआई आने से इतना हो गया कि जो रियल में टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, एक्सपर्ट है, उसको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है।
1: ठीक।
0: और एआई के माध्यम से बहुत सारी झूठी बातों को सच साबित करके किसी और का नाम दे करके प्रदर्शित किया जाता है, और उसका जो समाज के अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं उससे।
1: अगर कहीं से ऐसा लगता है गार्जियंस को, माँ बाप को, घर वालों को, कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है, या उसको उसको जो है कुछ समस्या है
0: जी,
1: और वो उसका व्यवहार हिंसक है या आक्रामक है, या कहीं से वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो कब ऐसा समझना चाहिए कि इसको एक काउंसलर की या एक साइकेटिस्ट की जरूरत है?
0: जब बच्चा छोटी छोटी चीजों पे आक्रामकता दिखाने लगे, जैसे अगर आपने किसी बच्चे को किसी काम की कही, छोटे से कोई काम बताया बेटा ये लाना, और उस पर वो शुरू शुरू में तो इग्नोर करता है, और अगर आपने दोबारा कही तो वो एग्रेशन दिखाता है, तो उसी समय समझ जाना चाहिए। और इसको किसी काउंसलर या साइकेटिस्ट के पास जाने से पहले शुरू में अगर गार्जियन खुद उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना शुरू कर दें, उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाएं, तो वो चीजें वहीं कंट्रोल हो सकती हैं। परिस्थिति आजकल ऐसी है कि दोनों माता पिता
1: वर्किंग
0: हैं, तो उनमें टाइम नहीं मिल पाता, तो ऐसी कंडीशन है, इस तरह के व्यवहार को ज्यादा इग्नोर न करें, तुरंत जो है किसी काउंसलर के पास संपर्क करें, जिससे कि उसके व्यवहार को वहीं की वहीं सही लाइन पर लाया जा सके।
1: तो श्रोताओं, बच्चों को सुरक्षित बचपन दे पाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता की ही नहीं बल्कि कहें तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम सबको इनके बारे में सोचने की तो ज़रूरत है ही। बच्चे कल का भविष्य हैं, हम सब जानते हैं, और वर्तमान की भी वो सबसे अमूल्य धरोहर हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होना, उनका आत्मविश्वास बनाए रखना और उनको स्वस्थ सुरक्षित बचपन दे पाना, ये एक संवेदनशील समाज की पहचान है। तो आज इस खास मौके पर हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध आक्रामक व्यवहार और हिंसा विषय पर, जिला मनोविज्ञान केंद्र आगरा के प्रधान डॉक्टर
3: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा।

0: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं, इसमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझे बल्कि उसको हम रिसोर्स समझे। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि इस कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है, जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं, जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए, जिसमें वॉल ऑफ काइंडनेस कैबिनेट्स कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को

0: रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटीरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम आज को अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: कमांडर साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, इसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।

0: धन्यवाद।
1: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
2: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
2: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
3: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
2: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
3: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
2: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
1: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
2: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
3: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
2: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
3: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
2: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
3: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
2: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
3: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
2: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
1: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान न्यौछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा

0: किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
1: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
0: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
1: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
0: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
0: और सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
1: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
0: एब्सोल्युटली, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
1: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
0: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहां पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं, और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए

0: बेहद खतरनाक साबित हो रहा है और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राइवर्स की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती है क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
2: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, आरडब्ल्यूएस और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं।
3: जो आप ई वेस्ट बॉक्स है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4,000 लीटर और ईयरली 48,000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट

0: इन इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है, और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए, 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस, विच मीन्स डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
2: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
1: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
2: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है, और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं, और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉय होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतर

0: तरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
1: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है। हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन

कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक

0: यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी सहज व्यवहार विषय पर। साथी होगी भेंट वार्ता, जिसका आप सुनेंगे मानवता पर कलंक है जातिगत और नस्लीय भेदभाव विषय पर अनिंद्र सिंह की धीरज कुमार शर्मा से बातचीत। अन्य सेगमेंट होंगे क्वेस्ट वर्ड, जिसमें आप जानेंगे मूर्खों का सोना विषय में जानकारी लीजिएगा। हेल्थ प्लस सेगमेंट में जानिएगा सेहत के साथ सतर्कता भी जरूरी विषय पर बातचीत। साथ ही जानिएगा टिप ऑफ द डे, मौसमी फल हैं भीतरी सनस्क्रीन। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विषय में, और होगी वार्ता जिसका विषय होगा अपनी मिट्टी पहचाने। वार्ताकार होंगे डॉक्टर

वीरेंद्र सिंह आपसे बातचीत करेंगे, अनिंद्र सिंह। साथ ही जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल, आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी हिंसा के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अन्य सेगमेंट्स होंगे मेरा देश मेरी शान, देश दुनिया, जानिएगा सेहत टिप्स, ज्ञान सागर होगा आज का प्रश्न, और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। वार्ताकार होंगी डॉक्टर देवी सिंह नरवार। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम शब्द गीत में, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द पर आधारित गीत। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर।

रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम कंट्री वाइड इनसाइट्स, और रात्रि 10 बजे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 10:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन, आप प्रस्तुत करेंगी राग सरस्वती। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम का पहला भक्ति रचना चार धाम फिल्म से अनुराधा पोडवाल और हरिहरन के स्वर में।

श्रोताओं, अमर अकबर एंथनी फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का गीत, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में किशन कन्हैया फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में किशन कन्हैया फिल्म से ये भक्ति रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वर में। बोल लिखे थे हिंदी वर ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। श्रोताओं, इन भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का कार्यक्रम युववाणी में। आपके आज के रेडियो सफ़र की हम सफ़र बनकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी राशि, और मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, एक बार फिर हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ बातें करने के लिए, ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए और आपको आपके मनपसंद गीत सुनवाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बातचीत का ये सिलसिला आज की चर्चा के साथ। साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती है आज और उनकी लिखी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। एक पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता में वो लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबा ला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। साथियों, इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक फूल की सहज अभिव्यक्ति को बहुत ही बखूबी दर्शाया है। उस पुष्प की ये चाह है कि वो उन वीरों के चरणों में अर्पित हो जो मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अब सोचिए साथियों, जब एक पुष्प की अभिव्यक्ति इतनी सहज हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं। साथियों, अगर आप आज के दौर में सहज रहना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आपके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो लाखों रुपए खर्च करके भी खरीदी नहीं जा सकती है। साथियों, सहज होने का सीधा सा मतलब है एक नो फिल्टर लाइफ जीना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करें या फिर उनके साथ रूढ़ हो जाएं।

0: बल्कि इसका मतलब सीधा सा यही है कि आप स्वाभाविक रहें, यानी कि वैसे रहें जैसे आप हैं। भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसी आपकी आवाज है, जैसा आपका रंग रूप है और जैसी आपकी आदतें हैं, उसे बिना किसी शर्म या हीन भावना के स्वीकार करें। क्योंकि जब आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो आप मन से बहुत हल्का महसूस करते हैं। साथियों, जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, सादगी अपनाना और दूसरों से बिना किसी दिखावे के दिल से बात करना सबसे कूल होता है। तो याद रखिए कि फिल्टर्स को फोन में ही रहने दीजिए, जस्ट बी योरसेल्फ। क्योंकि याद रखिए साथियों, ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा कॉपी से ज्यादा होती है। साथियों, सहज व्यवहार और खुद को अपनाने की बात से ही जुड़ा है हमारी आज की वार्ता का विषय। जब हम समाज में सहजता और बराबरी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां भी सामने आती हैं जो हमें झकझोर देती हैं। आज की हमारी भेंट वार्ता एक बेहद संवेदनशील विषय पर है। मानवता पर कलंक है जातिगत और नस्लीय भेदभाव। साथियों, 21वीं सदी में होने के बावजूद जब हम अखबारों में या सोशल मीडिया पर किसी के रंग, उसकी जाति या रिलीजन को लेकर भेदभाव की खबरें पढ़ते हैं, तो खुद से बार बार ये सवाल करने लगते हैं कि एक तरफ जहां हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, वहां अगर आज भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो क्या हमने सही मायनों में प्रगति की है? क्या हमारी सोच के दायरे बढ़ पाए हैं? अक्सर इन विषयों पर होने वाले हल्के फुल्के मजाक को हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, पर शायद यही हमारी गलती है। साथियों, हम युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि हम इस सोच को बदलें। इसी विषय पर आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता, अनिंद्र सिंह की धीरज कुमार शर्मा के साथ ये खास बातचीत।
1: श्रोताओं, रंग भेद, जाति भेद या नस्ल भेद, ये कुछ ब्लॉट्स हैं, कलंक हैं, बदनुमा दाग हैं पूरी मानवता के लिए। क्यों होता है ये सब भेदभाव और क्या है ऐसे कलंक को मिटाने का उपाय, इन सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं धीरज शर्मा जी। नमस्कार धीरज जी।
2: सभी श्रोता मित्रों को नमस्ते जी।
1: पहले तो यही बात, क्या होती है सोच?
2: हमारी धरती पर कुछ घटनाएं ऐसी घटी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका में सिटी शार्पविले, यहाँ पर कुछ लोगों ने गोरों द्वारा कालों पर हो रहे अत्याचारों को मिटाने के लिए उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस द्वारा आगजनी हुई और 69 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस घटना को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक निर्णय लिया गया अक्टूबर 1966 को कि हम हर 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाएंगे। तो 21 मार्च को पूरे विश्व में नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च से 27 मार्च तक ये पूरा एक सप्ताह है। इस सप्ताह को हम वीक ऑफ सोलिडेरिटी विद द पीपल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रेसिज्म एंड रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में मनाते हैं। मतलब एकजुटता, समन्वय।
1: मतलब जो रंग भेद या नस्ल भेद के खिलाफ खड़े हों, उनका सपोर्ट और समर्थन जताने का प्रयास है।
2: इसका आशय उस धारणा से है जो मनुष्य को नस्ल नामक अलग अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित करती है।
1: ये भेदभाव किन किन क्षेत्रों में या किन किन स्वरूपों में हमारे सामने आता है?
2: ये जो नस्लवाद की धारणा का क्षेत्र है, उसमें विरासत में मिली हुई सारी विशेषताएं या लक्षण, उनको ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व, संस्कृति, परंपरा, रंग, कदकाठी, भाषा, जन्म स्थान, धन संपत्ति, शिक्षा, नागरिक अधिकार, इन सभी क्षेत्रों में नस्लवाद की धारणा पाई जा सकती है। अब ये जो नस्ल भेद को समझना है, तो इसका हमें स्वरूप भी समझना होगा। तो नस्ल भेद का जो स्वरूप है श्रोता मित्रों, वो आक्रामकता या सूक्ष्म आक्रामकता, द्वेष, अपमान, पक्षपात, निर्दयता, भेदभावपूर्ण व्यवहार या कार्य, भोग विलास। मतलब हमें अगर पक्षपात, निर्दयता, द्वेष, अपमान इत्यादि यदि दिखाई देता है, तो वहां पर नस्ल भेदभाव है। ये भावना क्या है कि हम तुलनात्मक रूप से उच्चतर या निम्नतर किसी को मान लेते हैं।
1: एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करने की होड़ के कारण संपूर्ण मानवता कलंकित हो रही है।
2: नस्लवाद की भावना का उपयोग करके खूब व्यापार भी चलते हैं।
1: ऐसा
2: आपने जो टीवी, फिल्मों या आपने समाचार पत्रों या आपने विशिष्ट किताबों में गोरा उत्तम है, काला निकृष्ट है, ऐसा किसी प्रचार में आपने देखा होगा।
1: जी जी।
2: और हमारे अंदर ये भावना भर जाती है कि जो ये गोरा है वो उत्तम है, काला है निकृष्ट है, इसीलिए जो काले

0: हैं वो गोरा बनने के लिए इस क्रीम का उपयोग करें, इस ब्यूटी प्रोडक्ट का उपयोग करें, फलाना फलाना पाउडर लगाएं।
1: जी जी जी जी
0: धड़ल्ले से व्यापार चलाया जाता है और हम उस व्यापार में फंस के रह जाते हैं।
1: ये जातिगत या नस्ल का भेदभाव जो आपने बताया, इसके परिणाम क्या क्या दिखते हैं हमारे समाज में?
0: वास्तव में मुझे परिणाम नहीं, दुष्परिणाम बोलना चाहिए। नस्लवाद का दुष्परिणाम भय, आक्रमण, प्रतिघात, विद्रोह, असंतुष्टि, दंगा, सेवा न्याय या मानव अधिकार में स्वास्थ्य में वंचित होना, नरसंहार, परंपरा भाषा का नाश होना, ज्ञान विज्ञान की हानि होनी और विकास में रुकावट होना, ये सभी नस्लवाद के दुष्परिणाम हैं। और आप बताइए, कौन इन दुष्परिणामों को, कौन सा समाज है जो भुगतना चाहेगा? कोई भी नहीं ना?
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत व्यापक है ये और साथ में घातक भी। तो हम मानव जाति को सबसे पहले तो यही जानने समझने की आवश्यकता है कि मानवता आखिर है क्या और मानवता की भलाई किसमें है।
0: मानवता का मतलब होता है संसार के सभी प्राणियों के कल्याण की कामना। मानवता को समझने के लिए हमें मानवता के लक्षण भी समझने होंगे।
1: जी
0: तो मानवता के लक्षण हैं समझ, परोपकार, दया, एकत्व, करुणा, प्रेम, विवेक, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, सम्मान, कल्याण, रक्षण, समन्वय, सिंक्रोनाइजेशन, योग और क्षेम। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये मानवता के लक्षण हैं। तो हमने ये देखा कि जो मानवता के लक्षण हैं, वो नस्लवाद के लक्षणों से विरोधी लक्षण हैं। अर्थात मानवता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नस्लवाद कम होगा, सीधी सी बात। तो जब मानवता और नस्लवाद एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए यदि हमारे समाज में, हमारे देश में या हमारे हमारी पृथ्वी पर अगर नस्लवाद होगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो हम पर कलंक होगा।
1: जी जी
0: है ना, ऋग्वेद में कहा गया है मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने का मतलब ही है कि अगर आप 100% मनुष्य बनते हैं तो सीधी सी बात है कि वहां पर नस्लवाद तो पूरी पूरी तरह से समाप्त ही है।
1: और वैश्विक स्तर पर इस नस्लवाद को रोकने के लिए हम सबको एकजुट होकर प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है।
0: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को भी कहते हैं शॉर्टकट में, तो उसने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार को माध्यम बनाया और इस माध्यम को बना करके जन जागृति फैलाई। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच ने भी कई सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि नस्लवाद का विरोध हो पाए। भारतीय संविधान में भी नस्लवाद उन्मूलन के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16 और 29, मतलब 29
1: आईपीसी में,
0: भारतीय दंड संहिता 153A। तो ये सब भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं जो कानूनी रूप से हैं।
1: और हमारे आईपीसी में तो अभी है, ये प्राचीन काल से ही हमारे महापुरुष मानवता पर जोर देते आए हैं, पूरे विश्व की समग्रता की बात करते आए हैं।
0: स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आप सभी ने सुना है, वेदों की ओर लौटो, उसको याद करेंगे। उसका कारण यही है कि मानवता बढ़ेगी तो नस्लवाद कम होगा।
1: पूरे विश्व की समग्रता की बात करें,
0: कर्णवंतो विश्वम आर्यम, हम पूरा विश्व आर्य बनाए, आर्य मतलब श्रेष्ठ। तो वो किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी राज्य का व्यक्ति हो सकता है जो कि श्रेष्ठ है। यदि वो श्रेष्ठ है तो उसे आर्य कहा जाएगा।
1: उस श्रेष्ठता से डिगे तो रसातल में ही जाना है।
0: हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे भोगवाद बढ़ता है वैसे वैसे मानवता घटती है, और जैसे जैसे मानवता घटेगी वैसे वैसे नस्लवाद बढ़ेगा या भेदभाव बढ़ेगा। इसीलिए हमें भोग को छोड़ करके योग की तरफ आना है। योग के माध्यम से भेदभाव या नस्लवाद का भी उन्मूलन हो सकता है। जो योग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है मानवता के।
1: और हम भारतीय तो वैसे भी वसुधैव कुटुम्बकम और मानवता की वकालत करते आए हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं।
0: भारतीय वैदिक परंपरा के जो आचार्य हैं वो कहते हैं, हे मानव, तू अपनी मानवता को जानने का अवश्य प्रयास कर। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा। मैं कविता के फॉर्म में बताता हूँ। ईश्वर बसा अणु कण कण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतन जग में, सब समाया अगम्य में, भोगो जगत निष्काम वृत्ति से, त्यक्तेन प्रवृत्ति हो, यह धन किसी का भी नहीं, अथलेश न आ सकती हो।
1: लेकिन धीरज जी, ये तो हमारा अतीत है, आज के संदर्भों में क्या दृष्टिकोण या विचारधारा होनी चाहिए, क्या संदेश होगा आपका आज की पीढ़ी के लिए?
0: हम ये चाहेंगे कि हम सभी मित्र मिलकर के पूरे हमारे समाज में, पूरे हमारे देश में इस विषय को लेकर के घर घर जाएं, गांव गांव जाएं और गली गली जाएं, जिससे कि हमारे बीच, हम सभी में नस्लवाद या भेदभाव की कोई भावना की कोई जगह न रहे, जिससे कि हमें नस्लवाद का दुष्परिणाम न भोगना पड़े और मानवता के जो जो लाभ है वो सभी लाभ हमें मिले।
1: मानवता जिंदा रहनी चाहिए, वो सर्वोपरि है। इस चर्चा में धीरज जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, अपनी

0: और अपने श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद।
1: आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
5: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
4: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
5: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
6: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
7: साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था मानवता पर कलंक है जातिगत और नस्लीय भेदभाव। धीरज कुमार शर्मा से बातचीत कर रहे थे अनिंद्र सिंह। चलिए अब रुख करते हैं हमारे अगले दिलचस्प सेगमेंट की तरफ, जो है क्वेस्ट वर्ल्ड। और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड की। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। साथियों, ये कहावत सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी आयरन पायराइट के लिए खरी उतरती है। साइंस की भाषा में समझें तो आयरन पायराइट नाम का एक मिनरल होता है। ये दिखने में बिल्कुल असली सोने की तरह चमकीला और पीला होता है। पुराने जमाने में कई लोग इसे असली सोना समझकर धोखा खा जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया फूल्स गोल्ड। आयरन पायराइट कोई कीमती धातु नहीं है, बल्कि एक सामान्य मिनरल है। ये आयरन और सल्फर का एक मिश्रण है। इसकी बनावट और पीली सुनहरी चमक ऐसी होती है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है। पुराने जमाने में जब लोग सोने की खोज में निकलते थे तो अक्सर इस पत्थर को असली सोना समझकर खुश हो जाते थे। बस इसी वजह से इसका नाम फूल्स गोल्ड पड़ गया। अगर आपके सामने असली सोना और आयरन पायराइट रख दिया जाए तो आप दोनों में अंतर कैसे करेंगे? देखिए, दोनों की कठोरता में बड़ा फर्क होता है। सोना एक बहुत ही नरम धातु है, जिसे चाकू या दांत से आसानी से दबाया जा सकता है, जबकि पायराइट बेहद कठोर होता है और इस पर चाकू से खरोंच भी नहीं लगाई जा सकती। अगर इनके आकार की बात करें तो प्रकृति में सोना आमतौर पर टेढ़े मेढ़े नगेट्स के रूप में मिलता है, लेकिन पायराइट के क्रिस्टल्स एकदम परफेक्ट चौकोर या क्यूबिक फॉर्म के होते हैं। साथियों, इन्हें परखने का एक और वैज्ञानिक तरीका है, जिसे स्ट्रीक टेस्ट कहते हैं। जब असली सोने को अनपॉलिश्ड चीनी मिट्टी यानी पोर्सिलिन पर रगड़ा जाता है तो वो सुनहरी पीली लकीर छोड़ता है, जबकि आयरन पायराइट को जब रगड़ा जाता है तो ये काली या हरी और काली कलर की लकीर बनाता है। साथियों, इसके अलावा इनकी गंध से भी फर्क साफ हो सकता है। असली सोने में किसी भी तरह की कोई महक नहीं होती है, लेकिन जब आयरन पायराइट को आप हथौड़े से तोड़ेंगे तो इसमें मौजूद सल्फर के कारण तीखी गंध आपको आने लगेगी। साथियों, भले ही आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता हो, लेकिन आज विज्ञान और इंडस्ट्री की दुनिया में ये बहुत काम की चीज़ है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, जो केमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ है। अपनी खूबसूरत क्रिस्टल बनावट के कारण इसका उपयोग फैशन ज्वेलरी और डेकोरेशन के सामान में भी किया जाता है। साथियों, सबसे मजेदार बात यह है कि जहां पायराइट पाया जाता है उसके आसपास अक्सर असली सोने के भंडार भी मिलते हैं, यानी ये फूल्स गोल्ड कभी कभी असली खजाने का रास्ता भी दिखाता है। इसी के साथ साथियों, क्वेस्ट वर्ल्ड यहीं संपन्न होता है। चलिए अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, कार्यक्रम में अब वक्त है सेहत से जुड़ी बात करने का। आज सेगमेंट हेल्थ प्लस में हम जानेंगे कैसे सेहत के साथ सतर्कता बरतना भी जरूरी है। देखिए, आजकल का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। कभी कड़कड़ाती धूप, तो अचानक धूल भरी आंधी और बारिश। इस बदलते और बिगड़ते मौसम के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा सफर करता है तो वो है हमारी सेहत। साथियों, फिटनेस का असली मतलब बदलते मौसम में भी खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखना है। तो इस समर सीजन में अपनी सेहत और सतर्कता बनाए रखने के लिए आप कुछ सिंपल ट्रिक्स अपना सकते हैं, जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या डिटॉक्स वाटर को अपने रूटीन में शामिल करें। दोपहर की कड़क धूप में बाहर निकलना समझदारी नहीं है, बल्कि खुद को बीमार करने का दूसरा नाम है। अगर मौसम खराब है या गर्मी ज्यादा है तो आप घर पर ही रहें। धूप में निकलना ही पड़े तो सनस्क्रीन और सनग्लासेस लगाना ना भूलें। ये आपकी स्किन की और बॉडी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथियों, बदलते मौसम में फूड पॉइजनिंग का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस मौसम में स्ट्रीट फूड और ज्यादा ऑयली खाना खाने से बचें। मौसमी फलों को डाइट में शामिल करें। बाहर के खुले जूस पीने से बचें। घर पर ही फ्रेश जूसेस, शेक्स या स्मूदीज आप ट्राई कर सकते हैं। साथियों, घर से निकलने से

पहले एक बार वेदर फोरकास्ट भी ज़रूर से चेक कर लें। अगर आंधी, तूफान या हीट वेव का अलर्ट है तो अपने प्लान्स को आप थोड़ा सा रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसी में ही समझदारी है। सेहत के प्रति सतर्कता ही आपको अचानक होने वाली बीमारियों से बचा सकती है। बदलते मौसम में आप थोड़ा सतर्क रहें, अपनी सेहत को प्रायोरिटी दें और इसके साथ ही इस समर को एंजॉय करें। तो साथियों, हेल्थ प्लस में ये सेगमेंट अब यहीं संपन्न करते हैं और कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं अगला गीत।

साथियों, समय हो चुका है कार्यक्रम को संपन्न करने का, तो चलते चलते आज की आखिरी और सबसे काम की बात। इन दिनों जून की गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। हम बाहर निकलते हुए चेहरे पर सनस्क्रीन तो लगा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मौसमी फल जो हैं वो भीतरी सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं? जी हाँ, तरबूज, खरबूजा, आम और खीरे जैसे सीजनल फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और पानी होता है, जो हमारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करते हैं और सूरज की हानिकारक यूवी किरणों के डैमेज से बचाते हैं। तो सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ रोज एक कटोरी मौसमी फल जरूर खाइए और फिर देखिए कैसे अंदर से ग्लो आपके चेहरे पर झलकता है। साथियों, सहज व्यवहार पर चर्चा से लेकर सेहत की इस टिप तक उम्मीद है आज का ये युववाणी कार्यक्रम आपके दिल को भाया होगा। अब आपकी रेडियो साथी राशि आपसे विदा लेती है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। श्रोताओं, ये सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

ग्रामीण सुनने वाले मेरे सभी किसान भाइयों बहनों और मेरे श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी अनुराधा की राम राम। और साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त होंगे। इसी के साथ साथियों, चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज हम अपने कार्यक्रम में अपने किसान भाइयों के हित के बारे में। साथियों, कहते हैं ना कि किसान केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पालन पोषण करता है। खेतों में दिन रात मेहनत करके वह अनाज, फल, सब्जियां और अनेक प्रकार की फसलों को उगाते हैं। कभी तेज धूप तो कभी बारिश और कभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी हमारे किसान भाई अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब यही किसान उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां पहले जैसी मेहनत कर पाना भैया अब उसके लिए संभव नहीं रह जाता, तब उसके सामने आर्थिक सुरक्षा एक चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथियों, आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि यह योजना किसानों के जीवन को किस प्रकार सकारात्मक बदलाव ला रही है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें हमारे किसान जितना अंशदान करते हैं उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है। कहने का मतलब है कि ये योजना किसान और सरकार दोनों की साझेदारी पर आधारित है। साथियों, अब आपका सवाल होगा कि भैया

इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ? तो भैया इसके लिए ये योजना जो है वो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ष के लघु और सीमांत किसानों के लिए है। किसानों को अपनी आयु के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। जैसे कि यदि कोई इंसान कम उम्र में इस योजना में जुड़ता है तो उसका मासिक अंशदान भी कम होता है, लेकिन अगर कोई किसान 18 वर्ष की आयु में जुड़ता है तो उसका मासिक अंशदान जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे साथियों हम बात करें कि अगर कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ रहा है तो उसको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, जबकि अगर 40 वर्ष की आयु में कोई किसान इस योजना में जुड़ रहा है तो उसको लगभग 200 रुपये प्रति माह का अपना योगदान देना होगा। सोचिए साथियों कि आज के समय में जब हम एक कप चाय या नाश्ते पर जितना खर्च कर देते हैं, लगभग उतनी ही राशि को बचाकर किसान अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। साथियों इस योजना की एक और विशेषता है और वह है परिवार की सुरक्षा। यदि योजना से जुड़े किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती रहती है। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिलता है और भविष्य की चिंता कुछ हद तक कम हो जाती है। साथियों ये तो हुई योजना की विशेषता, अब हम बात करते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया की। इस योजना में शामिल होने के लिए किसान अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जा सकते हैं। वहां उन्हें आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर और भूमि संबंधी दस्तावेजों की सहायता से पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करने के बाद किसान का मासिक अंशदान सीधे बैंक के खाते से कटता रहता है, जिससे उन्हें बार बार भुगतान की चिंता नहीं करनी पड़ती है। साथियों आज के समय में ऐसी खेती के साथ साथ भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जिस प्रकार हम अपनी फसल के लिए बीज बचा कर रखते हैं। साथियों उसी प्रकार वृद्धावस्था के लिए भी कुछ व्यवस्था हमें करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इसी सोच को मजबूत करती है। ये योजना किसानों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने का एक अवसर देती है। तो साथियों अपनी चर्चा के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की छोटी बचत कल का मजबूत सहारा बन सकती है। इसी आशा और संदेश के साथ अपनी चर्चा पर यही विराम लगाते हुए चलते हैं मनोरंजन की तरफ और सुनते हैं कृष्ण गोपाल शर्मा की आवाज़ में यह गीत।

साथियों, हम सभी अपनी धरती, अपने गांव और अपनी खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम अपनी मिट्टी को वास्तव में पहचानते हैं? जिस मिट्टी से हम अन्न उगाते हैं, जो हमारे परिवार का पालन पोषण करती है, उसकी सेहत के बारे में जानना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए साथियों, आज हम मिट्टी से संबंधित वार्ता सुनने जा रहे हैं।

0: वह वार्ता का नाम है अपनी मिट्टी पहचाने। वार्ताकार है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और भेंट करता है अनिंद्र सिंह।
1: किसान साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र आवागढ़ से मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब हमारे किसान के लिए चूंकि मिट्टी ही सब कुछ है, किसान की फसल मिट्टी से ही आती है, तो मिट्टी की केयर करना किसान का दायित्व तो है, लेकिन किसानों को जानकारी नहीं होती कि मिट्टी के बारे में कैसे जानें। तो आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसानों को इस बारे में बताएं कि मिट्टी की जांच करवाना और मिट्टी की सेहत के बारे में जानना किसान के लिए कितना जरूरी है।
2: क्योंकि आपने जो है किसानों के उस बिंदु को छुआ है जिसको किसान बहुत

0: क्योंकि मिट्टी ही सब कुछ है, किसान की फसल मिट्टी से ही आती है, तो मिट्टी की केयर करना किसान का दायित्व है। लेकिन किसानों को जानकारी नहीं होती कि मिट्टी के बारे में कैसे जाने, तो आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसानों को इस बारे में बताएं कि मिट्टी की जांच करवाना और मिट्टी की सेहत के बारे में जानना किसान के लिए कितना जरूरी है।
1: क्योंकि आपने जो है किसानों के उस बिंदु को छुआ है जिसको किसान बहुत लंबे समय से कर तो रहा है लेकिन उसकी बारीकियों को बिल्कुल भूलता जा रहा है।
0: जी,
1: किसान लगातार उत्पादन ले रहा है, अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों को बो रहा है, सारे साधन टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, पानी के साधन अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उसकी मृदा है, जो एक जीवित बोली जाती है, उसको वो भूल गया है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, पौधे की आवश्यकता के सारे तत्व मौजूद हैं, पौधे की बढ़वार के लिए पूरा माहौल उसके अंदर मौजूद होना चाहिए।
0: जैसे हमारे शरीर की बढ़वार के लिए उसकी ताकत जो है वो खाना है।
1: जी,
0: तो हमारी जो किसान की फसल जो पैदा होके आती है उसको जो चाहिए वो मिट्टी से मिलता है,
1: मिट्टी के अंदर वो माहौल होना चाहिए।
0: जी जी,
1: जैसे कि मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की क्षमता होनी चाहिए।
0: जी,
1: पौधे की आवश्यकता के सभी तत्व कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, पौधे की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए।
0: जी,
1: किसान भाइयों ने क्या करा कि पहले पौधे का सबसे पहले भोजन कार्बनिक पदार्थ को अब देना किसान ने कम कर दिया और रासायनिक खाद के ऊपर आ गया।
0: जी, उपज लेने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स हैं, उनका उपयोग बढ़ गया।
1: उसमें भी उसने एक भूल करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो संतुलित मात्रा में न लगा के किसी एक खाद को बहुत ज्यादा लगा रहा है और किसी को बिल्कुल नहीं लगा रहा, उसकी वजह से जो संतुलन है तत्वों का वो बिगड़ता जा रहा है।
0: जी,
1: अपनी मिट्टी को किसान को पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर किसान जानता है पूरी तरीके से कि मेरे खेत के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उसी हिसाब से उसे फसल लेनी चाहिए और उसी हिसाब से अपने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
0: जी,
1: जब किसी एक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करता है तो वो रासायनिक उर्वरक उसके खेत में लाभ की बजाय हानि पहुंचाता है, क्योंकि वो दूसरे तत्वों को प्रभावित करता है और जब एक तत्व को प्रभावित करता है तो उसकी कमी से तरह तरह के रोग फसल पे आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि किसान भाई वर्ष में एक बार अपनी मिट्टी की जो है जांच जरूर करा लें।
0: जैसे कि डॉक्टर बोलता है हमें कि अपने शरीर की रेगुलर चेकअप आप कराते हैं, तो वही किसान के साथ है कि अपनी खेत की मिट्टी की रेगुलर चेकअप जो है वो करानी बहुत
1: है। इसकी वजह से कई सारे रोग आ रहे हैं। आज देखिए कि जिंक की जिन क्षेत्रों में कमी है, पहले नहीं थी, वहाँ पे कह रहे कि धान के अंदर खैरा रोग आ रहा है।
0: जी,
1: मक्का में सफेद कली रोग आता है, मूंग और आलू में दूसरे भूरे रंग का रोग आता है, बोरोन की कमी से कितने कमी आ रहे हैं, फल पटने लग रहे हैं।
0: जी जी,
1: आलू पे चेचक जैसी माते निकल रही है, तरह तरह की बीमारी आ रही है, आयरन की वजह से सफेदिया रोग आ रहा है, डायबिटीज रोग
0: में
1: लग
0: जो
1: रहा है,
0: पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है उसकी वजह से,
1: उसकी वजह से रोग लग रहे हैं और किसान उसको बीमारी समझ के दवाई लाकर प्रयोग करता है लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता। अगर वो दवाई उस तत्व से मिली हुई है तो थोड़ा बहुत आंशिक लाभ देगी, अन्य किसी तत्व की कमी को कोई दवाई पूरी नहीं कर सकती और उसको जो है लोस ही उठाना पड़ता है।
0: प्रधानमंत्री की बार बार ये कोशिश है कि देश का किसान जो है वो समृद्ध हो और उसकी समृद्धि के लिए जरूरी है कि उसकी फसल उत्पादन बढ़े और फसल उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसका खेत जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से इस अभियान को चलाए हुए हैं कि अपनी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवा लें। बहुत कम शुल्क लगता है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है।
0: जी,
1: और इस काम को करने में कुछ किसान को नहीं करना है, उसको सिंपल सा काम करना है, अपने खेत में जैसी फसल कट जाती है, यानी कि आपका मई जून का समय बहुत उत्तम है।
0: जी,
1: इस समय अपने खेत में से एक मिट्टी का नमूना लेकर और कोई भी पास की जो मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला है वहाँ पे अपना पहुँचा दें।
0: ये सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध, सब
1: सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण भी
0: जी
1: हर कृषि विज्ञान केंद्र पे उन्होंने उपलब्ध करा दिया है।
0: तो अब ये किसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी मिट्टी की जांच करवाए, अपने मिट्टी में क्या पोषक तत्व हैं और क्या नहीं है उनकी जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड वो है जो मेंटेन कर सकता है।
1: खेत के कटने के बाद में एक नमूना लेते हैं, नमूना लेने का बहुत सिंपल है, नमूने का मतलब ये है कि जैसा नमूना है अधिकांश खेत आपका उस नमूने जैसा होना चाहिए।
0: जी,
1: उसके लिए आपको थोड़ा सा रखना ध्यान, जैसे किसी पेड़ के पास से ना लें, नाली के पास से ना लें, सड़क के किनारे से ना लें, या खेत में कोई कोना बहुत ऊंचा और कोई बहुत गहरा है, तो दोनों में अलग अलग नमूना

0: ना लें,
1: जी
0: यानी कि अगर आप गहरे चलेंगे तो गहरे की मिट्टी में जो है उर्वरता ज्यादा होगी, ऊपर लेंगे तो वहां पर मिट्टी आपकी उर्वरता में कमजोर होगी।
1: जी जी
0: तो इस तरीके से आप एक नमूना लेंगे, नमूना लेने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं करना है, कहीं भी घूमते हुए आप ले लीजिए मेड़ के अंदर से जाके, और उसको एक साफ सुथरी थैली में मिला के 400-500 ग्राम मिट्टी का नमूना आपको लेना है,
1: जी
0: और वो पौधे की आवश्यकता अनुसार गहराई से लेना। जैसे आपको धान गेहूं मक्का बाजरा करना
1: जी,
0: तो आपको 6 इंच तक यानी 15 सेंटीमीटर गहराई तक का ही नमूना काफी है,
1: जितनी गहराई तक वो पेड़ आपका पहुंचता है।
0: इसी तरीके से आपको गन्ना करना है, अरहर करना है, कपास करनी है तो ये आपको 9 इंच गहराई तक लेना है
1: जी।
0: अगर आपको बाग करना है तो आपको 2 मीटर की गहराई तक
1: ये तो किसान
0: है।
1: को अपने आप समझने की
0: अपने
1: जरूरत
0: आप
1: है कि हमारी कौन सी फसल है तो वो कितनी गहराई तक जाती है और हमें कितनी गहराई तक
0: का
1: मिट्टी
0: नमूना,
1: नमूने की जो है जांच करवानी है।
0: उस नमूने को किसान भाई एक जगह अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के बाद में उस नमूने के अंदर पूरी तरीके से रख दें कि किसान का नाम, पिता का नाम क्या है, आपका गांव, डाकखाना, ब्लॉक, जिला और खेत का खसरा नंबर जरूर डालें
1: जी, अपनी
0: और
1: सारी डिटेल्स उसमें लिख के,
0: उसमें डिटेल लिख दें। ये भी लिख दें कि आपने पहले फसल कौन सी ली थी, आपने गेहूं किया था, सरसों की थी, और दूसरी आने वाली फसल कौन सी लेंगे
1: जी,
0: आप धान करना चाहते हैं, बाजरा करना चाहते हैं,
1: उसी हिसाब से फिर कृषि वैज्ञानिक या मृदा विशेषज्ञ जो है वो कौन से तत्व की उसमें कमी है और कौन से तत्व की आगे जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से फिर उर्वरक है या खाद है उसी की जानकारी के हिसाब से आगे आपको रिकमेंड करेंगे।
0: इसमें एक चीज और जानकारी किसान भाई को जरूर लिखनी चाहिए कि आप जो है संकर प्रजाति का प्रयोग करने के उसमें है या आप संकुल के में है।
1: जी जी,
0: संकर प्रजाति की पैदावार अधिक है तो उसकी जो है रासायनिक उर्वरक की जो खाद की मात्रा है वो भी उसको अधिक चाहिए,
1: ज्यादा चाहिए,
0: तो ये चीज किसान भाई बताएंगे तो जो परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट आएगी उसमें केवल किसान का उतना ही पैसा खर्च होगा जितना अति आवश्यक है
1: जी,
0: उसका अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, उसका बदले में क्या मिलेगा उसे कि उस प्रजाति की, उस वैरायटी की जो पैदावार देने की अधिकतम
1: क्षमता है
0: उसके बराबर उसको पैदावार
1: आपको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार
0: ज्यादा और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी ना तो आपका ये जो है जल्दी से उसका भंडारण में खराब होगा, मार्केट में भी उसकी चमक बढ़िया होगी
1: जी,
0: अच्छी तरीके से उसको पैदावार का जो है पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, किसान भाई एक गलती करते हैं कि उसी दिन सैंपल लिया और उसे 2 दिन बाद बुवाई कर रहे हैं। आपकी मिट्टी की जांच के लिए कम से कम लेबोरेटरी में 20-25 दिन लग जाते हैं।
1: तो किसानों को चाहिए कि वो ठीक से प्लान करें कि जब उन्होंने फसल काटी वो फटाफट उसका जो
0: नमूना
1: है वो लैब में भेज दें और जैसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से ही अपनी फसल को
0: उसमें लगाएं। एक चीज और है सर, इस पर किसान भाई ध्यान नहीं देते
1: जी,
0: आपकी जमीन के अंदर कई तरह के अवगुण जिसे कहते हैं कि बीमार मृदा
1: जी,
0: कहीं पे पानी के अंदर कुछ तत्वों की अधिकता हो रही है, कुछ धीमे धीमे पड़े पड़ी अपने धीमे से साल्ट या लवण ऊपर आ रहे हैं। किसान भाई लवण वाली बीमारी को खेत के अंदर बढ़ने देते हैं
1: जी,
0: और जब खेत जो है किन्हीं फसलों को छोड़ना शुरू कर देता है,
1: जब बिल्कुल ये स्थिति आ जाती है कि फसल उसमें हो ही नहीं रही, किसान जो है
0: पड़ रही है, बीमार पड़ रही है, तभी वो किसान भाई इस बात की चिंता करता है कि मेरे खेत में क्या बात हो गई, तब उसका परीक्षण आता है। तो जब आप परीक्षण कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा खेत नॉर्मल है या इसके अंदर किसी भी नुकसान देने वाले तत्व या लवण की अधिकता तो नहीं हो रही
1: जी।
0: अगर उसकी अधिकता हो रही है तो इससे मैं कम खर्चे में आसानी से उसको मृदा सुधारक के द्वारा सुधारा जा सकता है
1: जी जी।
0: जैसे जिप्सम लगाएंगे आप, सल्फर लगाएंगे आप, या आप जो है गोबर की खाद डालेंगे।
1: किसान को अपनी भूमि को, अपनी मृदा को पहचानते हुए उसके अनुसार फसल से उत्पादन लेने की जरूरत है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी मिट्टी के बारे में जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप हमारी भेंट वार्ता सुन रहे थे, अपनी मिट्टी पहचाने। इस भेंट वार्ता पे बात कर रहे थे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के साथ अनिंद्र सिंह। आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं।
3: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
4: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
3: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
4: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
5: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: साथियों, नई खोज सेगमेंट में आज हम आपको कुछ नई फसलों की किस्म के बारे में बताएंगे। ये किस्में कम लागत, कम पानी और बदलते मौसम में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम है। इनमें से साथियों एक है नई बाजरा संकर किस्म RHB 273। हाल ही में ही CICAR और ICRI SAT ने दुनिया में पहली थ्री वे हाइब्रिड बाजरा किस्म RHB 273 विकसित की है। इसकी विशेषता ये है कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है, सूखा सहन कर सकती है और पशुओं को अच्छा चारा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित WH 1309 गेहूं की नई किस्म है। यह अधिक तापमान सहन कर सकती है, देर से बुआई के लिए उपयुक्त है तथा रोगों के प्रति भी प्रतिरोधी है। आइए इसी के साथ किसान भाइयों आपको ले चलते हैं आगरा मंडी की तरफ और जानते हैं कि आगरा मंडी में हमारी फसलों के भाव क्या हैं। तो भाइयों, आगरा मंडी से प्राप्त ताज़ा जानकारी के अनुसार गेहूं का भाव लगभग 2675 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में चल रहा है। चना 7803 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 3280 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बिक रही है। वहीं आलू का भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज का भाव, प्याज और टमाटर लगभग 1000 प्रति क्विंटल के स्तर पर बने हुए हैं। इसी के साथ साथियों आपको बताते हैं कि आगरा मंडल में आज का मौसम कैसा है। तो आगरा मंडल में आज का मौसम काफ़ी गर्म रहा। अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिन भर काफ़ी तेज़ धूप रही है, आशा है कि शाम को बादल हो जाएं और बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में साथियों अपनी फसलों को और कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसी के साथ साथियों लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

साथियों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम ग्रामीण लोक में बस इतना ही। आशा है आज की प्रस्तुत जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होंगी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेना चाहूँगी, तो अपनी रेडियो साथी अनुराधा को अनुमति दीजिए। राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथ ही सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक भाई बहनों को, साथियों को कल्पना सरकार का नमस्कार। और कैसे हैं आप सब और क्या कर रहे हैं? हमारा इंतजार, सच जानिए साथियों, हम भी कर रहे थे आपसे मिलने की प्रतीक्षा। बातें जो करनी थी ढेर सारी, मन की बात। और मन की बात किससे की जाती है? अपने जो होते हैं, है ना, और आप अपने हैं। और आज भी हमें अपनी मन की बात करनी है आपसे, लेकिन आज की जो मन की बात है ना साथियों, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी आपकी। आपको याद है कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आपने सुना होगा कि एक देवर अपनी भाभी से शादी करना चाहता था, उसने मना कर दिया तो उस बच्चे को पटक पटक कर उसका जीवन ही ले लिया। साथियों जब हमने ये पढ़ा ना, एकदम दिल दहल गया। इसी तरह उससे जुड़ी फिर एक घटना याद आ गई साथियों, हमारे आसपास की है, कि सोचते हैं कि लोग इतने निष्ठुर भी होते हैं। जी हाँ, एक बच्ची जो गरीब परिवार से थी, पैसों की कमी के चलते अपनी जान से प्यारी बच्ची को ना चाहते हुए भी एक संपन्न परिवार के साथ भेजना पड़ा यहाँ वहाँ काम करने। मुश्किल से वो बच्ची 12 साल की ही होगी, जो कानूनन अपराध भी है ऐसे बच्चों से काम कराना, लेकिन मजबूरी क्या क्या नहीं करवा देती। और जो ये परिवार संपन्न परिवार था ना, उन्होंने वादा भी किया था उस बच्ची के माता पिता से कि उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार देंगे, पढ़ाएंगे, खाना कपड़ा हर तरह की सुविधाएं देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके तेवर बदल गए। सूरज उगता नहीं होगा कि उसे पहले ही उठकर वो छोटी सी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर के कामों में लग जाती थी। और सोच ही सकते हैं आप कितनी रात तक उस बच्ची से, नन्ही सी बच्ची, मासूम सी बच्ची से काम लेते होंगे। शरीर में चोट खाओ

के निशान भी हमने देखे थे। दबंग परिवार था, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके हमने उस बच्ची के माता पिता को सूचित किया और वो माता पिता भी बहुत मुश्किल से आ पाए। ऊपर से देखिए, वो संपन्न परिवार जो बच्ची को अपने ही माता पिता को नहीं सौंप रहा था, पुलिस आई, उसके हस्तक्षेप से, लोगों के समझाने से, तब जाकर वो बच्ची अपनी माता पिता के साथ अपने घर जा पाई। साथियों, ये तो एक बच्ची की बात थी, ऐसे अनेक बच्चियां, अनेक बच्चे हमारे देश में हैं जो हिंसा के शिकार हो रहे हैं। देश में क्यों, विदेशों में भी बच्चों की तस्करी भी होती है, यौन शोषण भी होता है, मानसिक शारीरिक यातनाओं से वो गुजरते हैं, यहाँ तक कि इन बच्चों का भावात्मक शोषण भी हो रहा है, जो बहुत घातक है ये शोषण। आप बताइए, बार बार बच्चे को नीचा दिखाना, अपमान करना, उसकी उपेक्षा करना, ताने मारना, डराना, उसे बेकार महसूस कराना, उसके मन मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ेगा बताइए। डरा सहमा सा हो जाएगा ना, उसके आत्मसम्मान पर चोट जो पहुंचती है, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जीवन पर, जीवन में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। शरीर पर चोट तो देखिए एक बार लग भी जाए तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मन जब घायल होता है ना, मन से जब वो पीड़ित होता है, उसके शरीर पर चोट ठीक हो गई लेकिन मानसिक जो चोट होती है ना, वो सही होने नहीं हो पाती इतनी जल्दी। और हाँ, आप देख भी तो रहे हैं कितने जगह विश्व में युद्ध हो रहे हैं, वहाँ के बच्चों पर क्या हाल हो रहा होगा, जख्मी तो हो ही रहे हैं, कितने बच्चों ने अपना पूरा परिवार खत्म होते देखा है, उनके दिल की हालत क्या होगी, नफरत तो होगी ना जिस देश ने उस देश पर हमला किया है। फिर बुनियादी ज़रूरत वो बच्चे नहीं पाते हैं, वो बिखर जाते हैं, और जीवन के शुरुआती चरण होते हैं ना साथी, उनकी सीखने की प्रक्रिया होती है वो सीख नहीं पाते, उनकी शिक्षा जो पाने की उम्र होती है वो नहीं पा पाते, यहाँ तक कि युद्ध में उन्हें जबरन शामिल भी किया जाता है। आपको नहीं लगता कि इन बच्चों के बचपन को उनको एक सुरक्षित, स्वस्थ, हिंसा से दूर जीवन जीने का वो अधिकारी हैं? पता है साथियों, आक्रमकता के शिकार मासूम बच्चों के संरक्षण के लिए ही आज हम हिंसा के शिकार निर्दोष बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। मकसद यही है, दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक शोषण और हिंसा झेल रहे बच्चों के दर्द को समझना, स्वीकारना और उनको उनका अधिकार देना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना। तो आइए मिलकर प्रयास करें कि हिंसा से इन बच्चों को बचाने का, भावात्मक सुरक्षा देने का, क्योंकि कुछ लोग करवाते हैं ना बाल श्रम, फिर उन पर हिंसा करते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, तो उससे हमें बचाना होगा उनके बचपन को, उनके जीवन की सुरक्षा करनी होगी, उनसे अच्छा व्यवहार करना होगा, उन्हें प्यार से सींचना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं ना साथियों, ये बच्चे ज़रूर खिल उठेंगे। फिर ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि ये युद्ध बंद हो जाए, चैन अमन हो जाए, ताकि बच्चों का जीवन प्रभावित ना हो, उनकी चीखें कानों में सुनाई ना दे, वो खुश रहें, उनका बचपन हंसता खेलता गुनगुनाता रहे, वो आगे बढ़ते रहें।

तो खोल दीजिए ना अब दरवाजे इन बच्चों के लिए, उन्हें उड़ने दीजिए, क्योंकि जिंदगी है बता तो, थोड़ा चख लें मीठा का आनंद ले लें, है ना। बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। पता है साथियों, जब ये गीत चल रहा था तो हमारे जहन में कुछ पंक्तियाँ भी आ रही थी, आप सुनना चाहेंगे? किसी महान कवि की लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं, सुनिए। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बींद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कई बार सुना है ना श्रोताओं ये पंक्तियां आपने, बहुत गहरे भाव हैं और दिल को छू जाते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत। लेकिन इसे लिखा किसने है क्या आप जानते हैं? चलिए आज का प्रश्न यही है आपके लिए कि इस कविता के, इन पंक्तियों के कवि कौन है, आप सोचिए। लेकिन एक बात तो है साथियों, जो ये कवि हैं एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपने सुंदर भावों को किस रूप से व्यक्त किया है, बेहद प्रसिद्ध लोकप्रिय कविता है ये साथियों, देशभक्ति से ओतप्रोत है। भाई हमारे देश की माटी की बात ही निराली है जो उसकी शान को बढ़ाता है, क्योंकि इस धरा में महान कवियों ने जन्म जो लिया है, उन्हीं में से ये महान साहित्यकार भी थे। पता है ये जो रचना की है पुष्प की अभिलाषा, इन्होंने जेल में की थी। जी हाँ, जेल में, क्योंकि ये जो कवि थे ना स्वतंत्रता सेनानी थे, देश को आज़ाद कराने की चाहत रखते थे और इसलिए वो आंदोलन में कूद पड़ते थे, देश को आज़ाद जो कराना था। और अंग्रेज, आप तो जानते हैं ना कितने निष्ठुर थे, निर्दयी थे, उन्हें जेल में बंद कर दिया, बिलासपुर के जेल में, वहीं कहते, और वहीं उन्होंने ये कविता लिखी ताकि देशवासियों में दे आज़ादी की चिंगारी को वो जगा सके, ज्वाला को जगा सके, हर देश का हर एक व्यक्ति देश के आज़ादी में लीन हो जाए, तत्पर हो जाए ताकि देश आज़ाद हो सके। और ये कवि थे।

हसा से थम गई आपकी ना, ये जानने के उत्सुक हो रहे होंगे। जी हाँ, ये जो कवि थे पंडित माखन लाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी हम याद करते हैं। साथियों, ये महान कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, योद्धा तो थे ही, लेकिन इनके मन में ना जो देश प्रेम की भावना आई, उसको जगाने वाला शख्स कौन कौन था आपको पता है? और कोई नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी। जब गणेश शंकर विद्यार्थी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तब प्रताप का संपादन माखन लाल चतुर्वेदी ने ही संभाला था। साथ ही उनकी सृजनात्मकता के तीन आयाम रहे हैं, एक पत्रकारिता और संपादन का, जहाँ उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया, तो दूसरा साहित्य सृजन, जहाँ काव्य, निबंध, नाटक, कहानी जैसी विधाओं में मौलिक लेखन के साथ साथ युगीन संवाद और सृजनात्मकता का विस्तार किया। वहीं तीसरा उनका व्याख्यान, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक प्रश्नों से दोचार हुए। साथ ही उनके बारे में बात कर रहे हैं तो कर जरूर रही हूँ, लेकिन पंक्तियाँ मेरे दिमाग में घूम रही हैं, पुष्प की अभिलाषा। साथियों, ये जो पंक्तियाँ हैं ना, केवल उस समय के लोगों को प्रेरित नहीं किया, देशभक्ति की भावना को नहीं जगाया, बल्कि आज भी इन पंक्तियों को जो पढ़ता है, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई तरह कृतियों की रचना की है, हिमतरंगी, समर्पण, माता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, समय के पाव, जो मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती है। उनके इस महान योगदान के कारण ही इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उस समय साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित इनाम था। और जब साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, तो बताइए पहला साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसके दिया गया? जी हाँ, इस महान साहित्यकार को ही। पद्मभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया, डाक टिकट भी जारी किया गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को साथियों हमारा शत शत प्रणाम। सच में साथियों, हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा जन्म इस धरा में हुआ है, जहाँ ऐसे महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ है। हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए ना देश की आन बान शान को बनाए रखने की, और इस शान को बनाए रखने के लिए आपको अपनी सेहत को भी दुरुस्त रखना होगा। तभी तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लोगों को किया है आगाह, तेज गर्मी में रहे संभल कर भारतीय पेय अपनाएं। एक तो उन्होंने पानी पीने की सलाह दी, तो दूसरा वही देसी पेय पदार्थों को पीने की। वैसे भी साथियों, देसी पेय पदार्थ जो होते हैं ना, सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आम पन्ना, सत्तू का शरबत, लस्सी, छाछ, कोकम शरबत, पान कम सांबरम, जो दक्षिण का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, काफी सेहतमंद होता है। इसको पीने से शरीर हमारा ठंडा रहता है। फिर बेल का शरबत, ये भी काफ़ी लाभप्रद होता है। असल में साथियों, बेल का जो होता है ना, इसका पना को जो अमृत तुल्य माना गया है, इसका जूस जो होता है अमृत माना जा गया है, क्योंकि इसकी ठंडी तासीर शरीर की गर्मी, लू और डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये पाचन तंत्र को मजबूत कर कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाती है। साथियों, ये जो पेय पदार्थ है ना साथियों, आप देखेंगे कि जो भारत के विभिन्न विभिन्न राज्य में जो पेय पदार्थ पाए जाते हैं, लोग इसको बड़े चाव से खा पीते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी इसमें झलक दिखाई देती है, इसमें मिलती है ना? देखिए साथियों, श्रेष्ठ भारत की बात चल रही है, तो देश दुनिया की बातें कर लें, समाचार जाने। देखिए साथियों, आज का जो एक अच्छी बात ये है, आज के समाचार में आप सुन के खुश हो जाएंगे, विटामिन डी व डायबिटीज, हृदय रोग संबंधी दवाओं के साथ 30 दवाओं की खुदरा मूल्य अब तय कर दी गई है। अब दवा कंपनियां, थोक विक्रेता और रिटेल्स इन दवाओं को मनमाने दाम पर नहीं बेच पाएंगे। अच्छी बात है ना? अगला समाचार सुने, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि समाचार है अच्छी, क्योंकि डिजिटल भुगतान साइबर धोखाधड़ी पर कसने वाली है अब नकेल, क्योंकि सुरक्षित भुगतान के लिए AI कवच तैयार कर रहा है रिजर्व बैंक।
स्वदेशी भुगतान

प्रणाली की जा रही है विकसित, डाटा की भी होगी सुरक्षा। साथियों, सुरक्षा होगी तो मन में एक चैन होगा, मन में शांति होगी, और शांति होगी तो गीत भी तो सुनने का दिल करेगा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? फिर से पूछ रहे हैं क्योंकि गर्मी काफी है। देखिए बारिश हुई है फिर भी गर्मी में राहत नहीं है, तो चले पहाड़ों में घूमने चलेंगे ना। कहाँ चले? बहुत सारी जगह हैं भाई। हमारा दिल कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश चलें। हिमालय की गोद में बसा ये प्रदेश साथियों सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत हमारे देश का अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य है। ये यहाँ की घाटियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ, झीलें, इसे भारत का स्विट्जरलैंड बना

जाती है। फिर सतलुज, व्यास, रवि, चिनाब, यमुना जैसी नदियाँ हैं ना, इनका उद्गम स्थान भी यही है, यहीं से निकलती हैं और मूक भाषा में कहती हैं, निरंतर बहते रहो, जीवन में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और हाँ, इस राज्य को भारत का फलों का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ फल बहुत ज़्यादा उगते हैं। आप सेब, हिमाचल प्रदेश का सेब कितना प्रसिद्ध है, प्लम, चेरी, खुबानी, आड़ू जैसे फल का यहाँ उत्पादन नहीं होता बल्कि निर्यात भी कर देश समृद्ध बन रहा है। और हाँ, इसे देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि इस राज्य के कण कण में आध्यात्मिकता, पौराणिक कथा, देवी देवताओं की उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। वशिष्ठ मुनि, परशुराम, व्यास जैसे महान ऋषियों ने हिमाचल की शांत वादियों में ही तपस्या की थी, और आज भी महान संत यहीं तपस्या करने जाते हैं। असंख्य प्राचीन मंदिर यहाँ हैं, शक्तिपीठ यहाँ है। वैसे घूमने कहाँ चलें, आप सोचिए कि अब घूम ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं, मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, तो आप हमारे साथ घूमने चाहिए चलिए। लेकिन घूमते घूमते चलो सफ़र का आनंद भी लीजिएगा, थोड़ी मस्ती भी कीजिएगा।

तो साथियों, सफर का आनंद पटरगस्ती के साथ, मस्ती के साथ लीजिएगा, लेकिन अभी कल्पना सरकार को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रही थी अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री

पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Union Minister of the Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Scindia, also attended the NEC, said all the leaders are united in their resolve to create a stronger and more prosperous Northeast. The plenary session of NEC brought together distinguished leaders, including governors, chief ministers and policymakers from across the Northeastern region. Defence Minister Rajnath Singh today approved a two-fold increase in financial ceiling for field commanders to strengthen operational efficiency in New Delhi. He also released the revised delegation of financial powers for the defence services, including medical and works projects. The Ministry of Defence said the revised delegation of financial powers will facilitate procurement of more than 1,25,000 crore rupees through the revenue route in line with the current year's budgetary allocations. The death toll in the fire incident at a private hospital in Muzaffarpur, Bihar has risen to 5. District Magistrate Subrat Kumar Sen said that as per the Chief Minister's directions, an ex gratia amount of 4 lakh rupees each has also been provided to the bereaved families. He added that a 5-member team has been constituted to investigate the incident. In Indonesia Open Badminton, Indian pair of M.R. Arjun and Hariharan Amsakurunan has advanced to the men's doubles quarterfinals in Jakarta. The Indian duo defeated the Malaysian pair of Aaron Thai and Kang Kai Ching in a hard-fought match by 16-21, 21-15 and 21-19 today. However, India's challenge in the singles discipline came to an end after P.V. Sindhu and Ayush Shetty suffered losses in their respective pre-quarterfinal matches. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता, पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवी सिंह नरवार।
2: पर्यावरण क्या है यह जानना अत्यंत आवश्यक है। आवरण में पर उपसर्ग लगाने से पर्यावरण शब्द बना है। पर का अर्थ है चारों ओर से तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ आवृत। फलत पर्यावरण का अर्थ है ऐसे घटकों का समुच्चय जो किसी जीवधारी को चारों ओर से आवृत किए हुए है, घेरे हुए है। इस प्रकार जल थल नव तीनों में जैविक व अजैविक घटकों का समूह तथा समस्त प्राकृतिक और अप्राकृतिक परिवेश ही पर्यावरण है। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित भूमि, मृदा, वायु, अग्नि, सूक्ष्मजीवी, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वन, वनस्पति, नदियाँ, झीलें, तालाब, जलप्रपात, झरने, सागर, चट्टाने, खनिज संसाधन आज सभी मिलकर पर्यावरण की संरचना करते हैं। स्पष्ट है कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल इन चार घटकों का समूह ही पर्यावरण है। चूंकि पहले तीन घटक प्राकृतिक हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं और इनका उपयोग और उपभोग जीवमंडल ही करता है, इसलिए इन प्राकृतिक घटकों की देखभाल व संरक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व जीव मंडल का ही है। चूंकि पर्यावरण को हम मनुष्य के संदर्भ में ही देखते हैं, इसलिए मनुष्य को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील, सजग, सचेष्ट और जागरूक रहने की अत्यंत आवश्यकता है। जीवन के भयंकर खतरे के रूप में आज पर्यावरण एक ज्वलंत मुद्दा ही नहीं अपितु भयंकर समस्या के साथ साथ अत्यंत भयावह और विस्फोटक रूप धारण कर चुका है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। फलतः पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व है। चूंकि मानव व प्रकृति का पारस्परिक गहरा अटूट संबंध है, इसलिए पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि एक लंबे अरसे से मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ व्यापक छेड़छाड़ के फलस्वरूप पर्यावरण का संतुलन नष्ट हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विगत 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में असामान्य तापमान, शीतलहर, हीट वेव, गर्म लू, ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर वर्षा

बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप, भूक्षरण, ज्वालामुखी विस्फोट तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं आदि से मानव जीवन, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन वनस्पतियाँ आज सभी के जीवन अस्तित्व पर बड़ा भयंकर विस्फोटक संकट उत्पन्न हो गया है। इससे विश्व भर में बेचैनी और चिंता का भयानक खौफ व्याप्त है। सब तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम मानव जन्य प्रदूषण यथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण

0: औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, अम्लीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण आदि को रोकने के लिए ठोस कारगर उपाय करें। साथ ही प्रकृतिजन्य प्रदूषण यथा दावानल, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट आदि प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अंधाधुंध की जा रही वनों व जंगलों की कटाई को रोकना होगा। परती व बंजर भूमि, पहाड़ी क्षेत्र, ढलान आदि क्षेत्रों में तथा सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण करना होगा। एक आंकड़े के अनुसार वर्तमान समय में भारत में 500 करोड़ वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक नागरिक को कम से कम 5 वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। लंबी आयु और छायादार वृक्षों में बरगद, पीपल, कदम्ब, शीशम, पाखड़, नीम, गूलर आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। फलदारों में आम, जामुन, अमरूद, सेब आदि के वृक्ष लगाकर बाग बगीचों का विस्तार करना चाहिए। जंगलों में लगने वाली आग दावानल को रोकने के कारगर उपाय करने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति हेतु जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ सभा, नाटक, संगोष्ठी, परिचर्चा, वार्ता, लेख प्रतियोगिता, नृत्य और संगीत के माध्यम से अधिकाधिक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। पॉलीथिन और प्लास्टिक का बहिष्कार कर कागज, कपड़े आदि के थैलों के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। जल ही जीवन है, पीने योग्य पानी का भारी संकट है, जल के दुरुपयोग को और अपव्यय को रोकना होगा। उल्लेखनीय है कि भूजल स्रोत का तीव्र गति से दोहन के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। इसे रोका नहीं गया तो अगले 2 दशकों के बाद भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उच्च उपभोक्ता संस्कृति जीवन शैली में अपेक्षित बदलाव के साथ साथ भोजन व स्वास्थ्य की दृष्टि से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया जाए ताकि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सीमित हो सके। वायु हमारे प्राण हैं, सांस लेने के लिए हमें शुद्ध वायु की अत्यंत आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु का स्रोत हरे पेड़ पौधे हैं, इसलिए वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अनेक कारणों से आज वायु विषैली हो गई है, इसलिए वायु प्रदूषण रोकने के लिए धुआं रहित ईंधन तथा धुआं रहित वाहनों के प्रयोग के चलन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के चारों ओर हरित पट्टी विकसित की जाए। वायु की शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए। नगरों, कस्बों तथा गांवों में शौचालय और मूत्रालय की समुचित व्यवस्था की जाए तथा औद्योगिक इकाइयों, कल कारखानों से उत्सर्जित अवशिष्ट एवं प्रदूषित जल आदि को तालाबों, नहरों, नदियों और झीलों में विसर्जित होने से रोका जाए। सब्जी, फल, खाद्यान्न की फसल उगाने के लिए अनेक प्रकार के घातक कीटनाशक रासायनिकों के प्रयोग को रोका जाए तथा भूमि मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों के प्रयोग की बजाय जैविक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। इससे खाद्यान्नों की शुद्धता में भी सुधार होगा। शुद्ध और शांतमय वातावरण हर दृष्टि से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लिखित प्रावधानों की जानकारी करें और इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार कर जन जन को जागरूक करें और अंत में हम सबको प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक होना पड़ेगा, तभी पर्यावरण संरक्षण संभव है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। वार्ताकार थे डॉक्टर देवी सिंह नरवार। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।
2: गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखार

करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक

0: दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेसवार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
4: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जन

0: सोच भी नहीं सकती थी।
1: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है माखनलाल पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म जयंती, तो आपकी जन्म जयंती पर आपको शत शत नमन करते हुए आज हम याद करते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, पत्रकार, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। श्रोताओं, इन्होंने अपनी ओजस्वी रचनाओं से देशभक्ति, मानवता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया। हिंदी साहित्य में इनका स्थान बहुत ही सम्माननीय है। श्रोताओं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इन्होंने अध्यापन कार्य से अपने जीवन की शुरुआत की, लेकिन बाद में पत्रकारिता और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए, क्योंकि इन्हें बचपन से ही देश प्रेमी कहा जाता था। इन्हें अपने देश से बहुत प्यार था।

श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। यदि हम बात करें इनके साहित्यिक योगदान की, तो श्रोताओं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान और प्रकृति प्रेम की भावना दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा आज भी देशभक्ति की श्रेष्ठ कविताओं में गिनी जाती है। इसके अलावा उनकी प्रमुख कृतियों में हिम तरंगिनी, साहित्य देवता और युग चरण शामिल हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भाग लिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्षरत थे। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आज हम बात कर रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। श्रोताओं, यदि बात करें उनके सम्मान और पुरस्कार की, तो उनकी काव्य कृति हिम तरंगिनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। हिंदी साहित्य और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाता है। श्रोताओं, माखनलाल चतुर्वेदी केवल एक कवि ही नहीं बल्कि एक महान राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक थे। उनकी रचनाएं आज भी युवाओं को देश प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान सदैव अमर रहेगा। आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश में आज हम बात कर रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यानी भारत की मिट्टी केवल धरती नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा, संघर्ष और विकास की जीवंत कहानी है। आज जब हमारा देश आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, तब अपनी जड़ों और अपनी माटी से जुड़ाव हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने देश के प्रति, इसकी माटी के प्रति श्रोताओं, हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं जो हमें निभाने ही चाहिए, और उन्हीं में से एक है अपने पर्यावरण को बचाना। श्रोताओं, आज है 4 जून और कल है 5 जून यानी पर्यावरण दिवस। श्रोताओं, विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर

0: आइए कुछ बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों की जिम्मेदारी की। श्रोताओं, हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में जागरूक होने का संदेश देता है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, जल संकट और जैव विविधता का ह्रास आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती है। भारत भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और स्वच्छ भारत जैसे प्रयास एक हरित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत पहल हैं।
1: होशियार, होशियार।

श्रोताओ, मेरी माटी मेरा देश का संदेश भी यही है कि हम अपनी धरती, अपने गांव, अपने खेतों और अपनी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज है कि वो एक पौधा, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए, जल की बचत करे और स्वच्छता का संकल्प ले, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और एक सुंदर पर्यावरण दे सकते हैं। इसी सकारात्मक संदेश के साथ श्रोताओं, बस हम इतना ही कहेंगे कि अपनी माटी, अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का भाव हम सभी बनाए रखें। मिट्टी की खुशबू में बसता है देश का मान, प्रकृति की रक्षा से ही होगा भारत महान। और श्रोताओं, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को समाप्त करने की अनुमति दीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीत। श्रोताओं, आज का शब्द है चुपके से, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत हेलो ब्रदर फिल्म से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फैज अनवर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, साथिया फिल्म से ये गीत आपने सुना, साधना सरगम और मुर्तुजा कादिर की आवाजों में। शब्द रचना गुलजार की थी, संगीत A.R. रहमान का। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं S.G. बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, चुपके चुपके फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में मिशन कश्मीर फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम शब्द गीत यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत गदर फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार एस के आवाजों में। उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, तेरे नाम फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था हिमेश्री शमिया ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सिद्धार्थ से विक्की प्रसाद के संगीत निर्देशन में गरिमा बाहेल और सिद्धार्थ सिंह के गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में टॉयलेट, एक प्रेम कथा फिल्म से ये गीत आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गरिमा बहेल और सिद्धार्थ सिंह के संगीत को संगीतबद्ध किया था विक्की प्रसाद ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

हिंदी पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत

0: है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.vi.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की।

0: आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वह नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंग्यास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में शराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रूनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को खत्म कर दिया और इस खित्ते को तनाज़ों के एक मरकज से बदलकर मौके का मरकज बना दिया है। शुमाल मशरकी काउंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमन व कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सयाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कान तलाश करें। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तहत मुत्तहिद हों कि एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेज़बान वज़ीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखिला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के 8 वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहती पर मबनी दुनिया की तरगीब देता है।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में

0: अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
1: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जामे निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद के एक एरिना ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया से आने वाले बैनुल अक्वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर्स मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मर्तबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से बहुत बुलंद करके एक इंतहाई तकनीकी और मुकाबला जाती खेलों का मुकाबला बना देती है, जिसका मकसद ओलंपिक तक रसाई हासिल करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाति कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दुगने इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दीगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज भी जारी की। वजारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज इस साल की बजट जाति मुख्तस रकम के मुताबिक महसूलात के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मुसव्विदा जारी किया है, जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर एआई पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। यह मुसव्विदा एआई के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलात की इजाजत देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जुमा और रस्मुलखत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निजाम से मुतालिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमोदरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि ये मुल्क में तवानाई की काया पलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकलो हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस इफ्तिताह को एक यादगार और पेशबीनी पर मबनी हुसूलयाबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि यह संगे मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ, पायदार और खुद कफील नकलो हरकत के तसव्वुर से कतई मेल खाता है।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप

को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। ये करारदाद जंग को मुस्तरद करने के कामयाब मुजाहरे में चार रिपब्लिकन अराकीन के डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने के बाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से कामयाब रही। ट्रंप के जंग से मुतालिक इख्तियारात को लगाम लगाने की गरज से ऐवान के जरिए ये चौथी कोशिश है, जिसके लिए बकौल तनकीद निगारों के कांग्रेस की मंजूरी का फुकदान है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक का एक निज़ाम वजा किया है, ताकि इम्तिहान के अमल की सालमियत को बेहतर बनाया जा सके और असल की जगह फर्जी फर्द के जरिए इम्तिहान देने की रोकथाम की जा सके। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िदा सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इब्तदाई इम्तिहान 2026 के दौरान कामयाबी के साथ चेहरे की शनाख्त के जरिए तस्दीक के अमल को नाफिज किया। चेहरे की तस्दीक का प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाता है कि दरखास्त फॉर्म पुर करने के वक्त उम्मीदवार का जो फोटो अपलोड किया गया था वो उम्मीदवार वही है जो इम्तिहान देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ इम्तिहान देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल की और अहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में बहुत ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज बारिश हुई, जिसके सबब गर्मी और हफ्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है, जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जाबंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगा 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निजी तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा। तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, एक बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरह आवासीय सुविधा है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत PM जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सके,

0: कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है
1: जी
0: उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके, और उसके तहत हमारा 10 मई से 17 मई तक ये टेक्नोलॉजी इज एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब
1: जी
0: विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पर एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए
1: जी
0: तमाम
1: जी
0: प्रोग्राम।
1: जी पांडे जी, एक चीज मैं
0: जी
1: आपसे जानना चाहूंगा। तो जितनी आपने योजनाएं बताई, और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक, जहां वो है वहीं तक पहुंचाया जा सके?
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जैसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं, और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान है जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप
1: जी
0: इनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए, और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.75 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल की हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था
1: जी
0: कि
1: जी
0: डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं
1: जी
0: उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वार एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है, और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहां पे लगातार देने का प्रयास
1: जी
0: कर रहे
1: यहाँ
0: हैं।
1: पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है। इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें। तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो

0: सिलेबस एक बहुत बड़ा अभियान, आदिकवि अभियान के रूप में उसको चलाया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं है। उसी के तहत आदिकवि अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई, ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने, और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे, और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिल के जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, और आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं, उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं, जब तक उनकी बात सुन के उन समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से, तो वो कामयाब नहीं होता है। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है, जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को, ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने, मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके, ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के, उस पर एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो सीएसआर के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है।
1: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में, और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक लोक एवं सुगम

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा. शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

0: क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन।
1: नमस्कार।
0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेह

0: लता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हो चुका है शास्त्रीय संगीत का, तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शुभ्रा तले गांवकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग सरस्वती, तो आइए सुनते हैं शुभ्रा तले गांवकर से राग सरस्वती में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शुभ्रा तलेगांवकर से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग सरस्वती। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's